मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि। तदनुसार 25 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव

0: चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। IPL क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। हमारे व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए जिससे दूसरों को प्रसन्नता और शांति मिल सके।

0: शिव शंकर के गले में सर्पों की माला है, शीश पर माँ गंगा विराजमान है, जो हमें निरंतरता और शीतल बने रहने का संदेश देती हैं। हे प्रभु, आपकी शरण में रहकर हम भक्ति करते रहें, यही मन की अभिलाषा है।
1: जो भी प्राणी भगवान शिव की भक्ति, सच महा और विष्णु भी जिनका ध्यान लगाते हैं, कृपालु हैं।

हरि का नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, मन के विकार समाप्त हो जाते हैं। हे परमपिता परमात्मा, हम तन मन से आपकी आराधना करते रहें, यही विनती है।

मुरली की तान सुनकर गोपियां दौड़ी चली आती थीं। मुरलीधर की लीला अपरंपार है। हे प्रभु, आपकी कृपा की धारा में हम भी सराबोर हो जाएं, बस यही आशा है और विश्वास भी।

इस भजन के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:25 हुए हैं। चिंतन में आज विषय है सत्याग्रह की प्रासंगिकता।

आज की नई पीढ़ी की यह जिम्मेदारी है कि वो गांधी जी के विचारों को अमली जामा पहनाने में बढ़ चढ़कर भाग ले। दरअसल गांधी है ही एक विचारधारा और उनके उसूलों पर अमल करके ही हम देश का विकास कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक व्यवस्था, ये तीन तत्व हैं जो समाज की दिशा बदल देते हैं। गांधी जी ने 100 वर्ष पूर्व ही कह दिया था कि धरती के पास हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी करने का सामर्थ्य है, पर हमारे लोभ का नहीं। विकास की अंधाधुंध रफ्तार वाले पश्चिमी मॉडल के उपभोक्तावाद का उन्होंने विरोध किया था, जो आज बहुत प्रासंगिक है। गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में आपके जितने स्रोत हैं सीमित हैं, इसलिए हमें जीवन में संयम और सादगी की जरूरत है। कुटीर उद्योगों एवं खादी का जो समर्थन किया, उसके पीछे भी विकेंद्रित अर्थव्यवस्था व स्वावलंबी ग्राम स्वराज्य की अवधारणा थी। आज जिस विकास की बात हम करते हैं, उसका समर्थन हम गांधी जी के चिंतन में पाते हैं। आज की परिस्थिति में लोगों की यह धारणा है कि सत्य, अहिंसा, स्वदेशी जैसे जीवन मूल्य शायद अर्थहीन हो गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता कहीं बढ़ गई है। यद्यपि विश्व के नक्शे पर भी देखें तो विश्व शांति को खतरा है। एक ओर बेहद घातक हथियारों की शक्ति से दुनिया के कमजोर राष्ट्रों पर अपनी आर्थिक नीतियां थोपकर उन्हें आर्थिक तौर पर गुलाम बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर प्रतिक्रिया स्वरूप साम्राज्यवादी ताकतों का मुकाबला करने के लिए ऐसी आतंकवादी शक्तियां उभर कर आई हैं जिनके हिंसात्मक हमलों ने दुनिया के आम आदमियों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। विश्व के इस आतंकी साये में भी गांधीवाद ही आज प्रासंगिक है, क्योंकि साम्राज्यवाद, आतंकवाद अंत में एक दूसरे की मदद ही करते हैं। मनुष्य को तमाम प्रकार की हिंसा से मुक्त कराने के लिए जिस साधन की खोज कर गांधी जी ने जो साधन निकाला, उसका जन्म 11 सितंबर 1906 को जोहान्सबर्ग में हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के उस शस्त्र का जन्म हुआ जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया और जो प्रेम अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। गांधी जी के आदर्श आपसी भाईचारे व प्रेम के मुख्य स्तंभ हैं। उन्होंने कहा भी था, हो सकता है कि प्यार की ताकत को मानने में दुनिया को वक्त लगे, पर धीरे धीरे ही सही एक दिन दुनिया समझेगी जरूर कि थल, जल, सेना और सीमाओं से बढ़कर देश और इंसानों के बीच बढ़ती असहयोग की भावना ही असली समस्या है। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि बुद्धि के विकास की तो सीमा है, पर हृदय के विकास की कोई सीमा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार जब हम भाईचारे के उस प्रेम को जो रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता, लिंग, वर्ग कुछ नहीं जानता अपना लेते हैं, तो शांति और न्याय के शत्रु खुद ब खुद अपना सफाया कर लेंगे। गांधी जी ने जो भी किया वो आखिर मानव जाति का हृदय जीतने के लिए ही किया। गांधी जी ने यह दावा कभी नहीं किया कि उनके विचार अंतिम हैं। उनके पास हर बात का उत्तर नहीं था। एक बार सत्याग्रह के बारे में उन्होंने कहा था कि एक निर्माणाधीन

0: ज्ञान है। यह संभव है कि अहिंसा का सिद्धांत एवं प्रयोग आज विकास की उसी सीढ़ी पर हो जिस पर मार्कोनी तथा एडिसन के दिनों में बिजली थी। गांधी जी प्रतीकात्मकता के विशेषज्ञ थे। वो जानते थे कि इंसानी लगाव एक सार्वभौम चीज है। एक आदमी की अकेले कार्यवाही भी यदि मानव आत्मा के भीतर मौजूद सत्य की धारणा को संबोधित कर सके तो यह बहुत सारे लोगों को सक्रिय कर सकती है। आज गांधी जी की प्रासंगिकता विदेशों में भी मानी जा चुकी है। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और दलाई लामा गांधी जी से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं। मार्टिन ने गांधी जी के ही विचारानुसार अमेरिका में मांगे रखी थी कि देश में चमड़ी का रंग देखकर किसी की प्रतिभा का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की मुक्ति में गांधी विचारों का अनुपालन करने की बात स्वीकारते हुए कहा कि गांधी अहिंसा के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहे। मैंने भी इस गांधीवादी रणनीति का अनुपालन किया। अपने देश की आर्थिक नीति में भी गांधी के प्रभाव को स्वीकारते हुए मंडेला कहते हैं, आत्मनिर्भरता पर गांधी जी का जोर एक ऐसा बुनियादी आर्थिक सिद्धांत है जिसका अनुसरण यदि हम करें तो तीसरी दुनिया से भुखमरी मिटाने और विकास को गति प्रदान करने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इसलिए ये एक ध्रुव सत्य है कि दुनिया को शांति के मार्ग पर चलाने की चाहत वाले बापू का महत्व कभी समाप्त नहीं होगा। गांधी मात्र एक नेता, व्यक्ति, महात्मा या बापू नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन का नाम है, जिसे जितना भी जीवन में उतारना जरूरी है उतना ही जरूरी उनके बताए रास्ते पर चलना है।
1: चिंतन में आज विषय था सत्याग्रह की प्रासंगिकता। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सबसे पहले जानकारी लीजिए हमारे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का संगीतमय प्रसारण। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर सुनिएगा डॉक्टर भंवर पाल सिंह की वार्ता, विषय होगा कपास की वैज्ञानिक खेती। 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा में आपको सुनवाएंगे डॉक्टर राजीव शर्मा की वार्ता, कंधे का जाम होना कारण और उपचार विषय पर। 7:31 पर सुनिएगा आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। सदाबहार फिल्मी गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि में सुबह 8:45 पर। 9:25 पर सुनिएगा गीत मंजूषा कार्यक्रम में पुरानी फिल्मों से तराने। कार्यक्रम लोक संगीत में आज कलाकार होंगे रामदास बालक चटपटा और उनके साथी। यह कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 9:45 पर। 10:00 आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुरसरिता में सदाबहार फिल्मी गीतों का। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। 11:00 कार्यक्रम आज के कलाकार केंद्रित होगा अभिनेता सुनील दत्त पर। कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गंगा दशहरा पर। विषय होंगे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, जीवनदायिनी नदियों धार्मिक सामाजिक एवं आर्थिक महत्व और स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। दिन में 12:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम नए तराने। 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में चर्चा होगी चार दीवारी से खेल के मैदान तक महिलाएं विषय पर। मेरी माटी मेरा देश में बात करेंगे गंगा जल ही नहीं जीवन भी। फैशन ब्यूटी में बात होगी पुरानी साड़ी को दे नया लुक। रेसिपी टाइम में आपको बताएंगे देशी फूड सत्तू के बारे में। साथ ही सुनिएगा कुछ फिल्मी गीत और छवि शिवहरे की वार्ता हमारी हस्तकला हमारी पहचान। कार्यक्रम घर संसार का प्रसारण समय रहेगा दिन में 1:15। 1:45 पर सुगम संगीत में आपको

सुनवाएंगे रानू मुखर्जी के गाए गीत। 2:30 पर आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत। 2:45 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और गीत गुंजन का आनंद लीजिएगा दिन में 3 बजे। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या। 11:30 पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत केंद्रित होगा गंगा दशहरा पर और इसमें विषय होंगे स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन और जीवनदायिनी नदियों का धार्मिक महत्व। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति।

पार्वती की हस्त रेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थी कविता कृष्णमूर्ति। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर भंवरपाल सिंह की वार्ता, विषय है कपास की वैज्ञानिक खेती।
1: कपास एक नकदी की फसल है। खरीफ की फसलों में यह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखती है। अगर इसकी खेती को विधि संगत तरीकों से किया जाए तो यह फसल भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आगरा जैसे ज़िले में जहां पानी की कमी है, वह इस क्षेत्र को अर्ध शुष्क क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पिछले कुछ दशक से अगेती अरहर के विस्तार के बाद कपास की खेती का क्षेत्रफल घटता चला गया। कपास की खेती को यदि कुछ तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो हम खरीफ में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए ऐसे खेतों का चुनाव किया जाए जिनकी मिट्टी दोमट या दोमट से मटियार दोमट हो तथा जल प्लावन की स्थिति से मुक्त हो। कपास की खेती दो प्रकार की होती है, एक अमेरिकन कपास जिसका रेशा अच्छा व बाजार भाव भी अधिक मिलता है तथा उत्पादन भी अधिक होता है, व्यापारिक दृष्टि से ठीक होती है। दूसरी देसी किस्म की कपास होती है जिसका उत्पादन कुछ कम तथा जिसका प्रयोग रजाइयाँ भरने व ग्रामीण उपयोग में अधिक होता है। इस किस्म में कीड़े मकोड़े का प्रकोप भी कम होता है व गुणवत्ता की दृष्टि से यह अमेरिकन कपास की अपेक्षा कुछ कमज़ोर होती है। इस क्षेत्र के लिए कपास बुवाई का उचित समय 20 से 25 अप्रैल अधिक उपयुक्त है, लेकिन देसी कपास को मई के प्रथम सप्ताह तक बोया जा सकता है। गर्मी का प्रभाव बढ़ने से जमाव के बावजूद पौधे सूखने व संख्या में कम होने की संभावना अधिक बढ़ जाती हैं, इसलिए अप्रैल माह बुवाई हेतु अधिक उपयुक्त रहता है। बुवाई से पूर्व खेत की पलेवा करके अच्छी व गहरी जुताई करनी चाहिए, पुनः दूसरा गहरा पलेवा करके सही नमी व ओट में सुबह 8 बजे तक या साय के समय बुवाई करनी चाहिए। बुवाई से पूर्व बीज को 5-6 घंटे पानी में भिगोएं तथा छाया में फरेरा करें। थायरम या बावस्टीन से शोधित करके लाइन में 2 इंच की गहराई पर बैलों से, हल द्वारा या सीडल से 2.5 फीट की दूरी पर अमेरिकन कपास व 2 फीट की दूरी पर देसी कपास की बुवाई करें। पौधों की पर्याप्त संख्या के लिए देसी कपास का 15 से 20 किलो बीज व अमेरिकन कपास का 20 से 25 किलो बीज प्रयोग करना अधिक उपयुक्त रहता है, ताकि पौधों की संख्या कम न हो और बाद में घने पौधों को निकालकर पौधों की दूरी आवश्यकतानुसार रखी जा सके। उगने के बाद 15-20 दिन पर खुरपी से

0: गहरी निराई करनी चाहिए ताकि खेती में नमी कायम रह सके और फसल को खरपतवार से मुक्त रखना भी अत्यावश्यक है। 1.5 माह की फसल होने पर फसल में सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है। सिंचाई के बाद फसल में देसी हल से जुताई या फावड़े से गुड़ाई भी करानी चाहिए ताकि फसल में नमी संचित रहे व पुनः सिंचाई की जरूरत न हो और खरपतवार भी न हो सकें। इसके उपरांत अमेरिकन कपास में कीट नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है। शुरू में जैसे नियंत्रण हेतु 2 माह की फसल पर रोगोर या डेमिक्रॉन या निवाक्रॉन के 2 छिड़काव 15 दिन के अंतर से, बाद में 15 दिन के उपरांत तीसरा छिड़काव ब्लाइटॉक्स प्लस निवाक्रॉन तथा वर्धक के साथ किया जाए ताकि गूलर में गुलाबी रंग की गिरार को नियंत्रित किया जा सके। मौसम में नमी अधिक होने पर गूलर को सड़ने से बचाने के लिए उक्त दवा में 4 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन भी मिला लेनी चाहिए। चौथा छिड़काव अगस्त के अंत में पुनः निवाक्रॉन प्लस स्टेप्टोसाइक्लिन का मौसम के हिसाब से दोहराना चाहिए। बाद में आवश्यकता पड़ने पर 5वां छिड़काव कार्बोराइल घुलनशील पाउडर का करना चाहिए। मौसम साफ होने पर आवश्यकता नहीं है। अच्छे उत्पादन के लिए फसल में उर्वरक का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। आलू के बाद फसल लेने पर उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है। गेहूं व सरसों के खेतों में 35-40 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग काफ़ी है। नत्रजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा बोते समय, शेष नत्रजन वर्षा होने पर फूल की अवस्था शुरू होने से पहले दें। फसल में 2 बार टॉपिंग भी की जानी चाहिए। पहली वर्षा शुरू होने पर बढ़वार को नियंत्रित करने के लिए ऊपर की किल्ली 1 इंच तोड़ देनी चाहिए। इससे अवांछित बढ़वार रुकेगी व शाखाएं बढ़ेंगी तथा गूलर अधिक लगेंगे। 15 सितंबर के लगभग जब पौधों पर गूलर बन चुके हों, फसल को ऊपर से लगभग 9 इंच कतर कर दूध वाले पशुओं को खिला देना चाहिए। इस प्रक्रिया से गूलरों को बल मिलेगा, वह बड़े होंगे तथा जल्दी पककर खिलेंगे। गूलर के खिलने पर पहली व आखिरी चुनाई को अलग रखना चाहिए। बाकी चुनाई 5-6 दिन के अंतर से पूर्ण खिली हुई कपास की जानी चाहिए। इस अवस्था पर कपास को साफ व स्वच्छ रखने के लिए पत्ते तोड़कर अलग कर देने चाहिए या पशुओं को खिलाएं, जिससे खिली हुई कपास में सूखे पत्ते चिपटकर उसकी गुणवत्ता को प्रभावित न करें। इस प्रकार कपास की खेती करने पर देसी कपास से 15 से 16 कुंटल व अमेरिकन कपास से 20 से 25 कुंटल कपास का उत्पादन लिया जा सकता है। कपास की खेती से ईंधन के लिए लकड़ी मिलेगी, जमीन के नीचे की परत का उपयोग होगा व ऊपर की परत को राहत मिलेगी तथा समय से फसल लेकर नवंबर माह में रबी की फसल की बुवाई करके कृषक अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे।

कपास की वैज्ञानिक खेती विषय पर वार्ता वार्ताकार थे डॉक्टर भंवर पाल सिंह। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आगामिभ्यः षड्दिवसेभ्यः प्रवर्तिष्यते इति भारतीयर्तुविभागेन सूचितम्। क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं पराजितम्। अपरतः राजस्थान रॉयल्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं त्रिंशत् धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
3: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के

0: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:10 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर राजीव शर्मा की वार्ता, विषय है कंधे का जाम होना, कारण और उपचार।
1: दर्द एक बहुत ही आम शिकायत है। ऐसा माना जाता है कि कंधों के आसपास जोड़ों में सूजन आने के कारण यह दर्द होता है। ऐसे दर्द में कभी कभी कंधे सुन्न भी पड़ जाते हैं। यह स्थिति कई बार महीनों तक रह जाती है। हमारा कंधा 3 हड्डियों से बना होता है, ऊपरी बांह की हड्डी ह्यूमरस, कंधे की हड्डी स्कैपुला और कॉलर बोन असली। ऊपरी बांह की हड्डी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा कंधे के ब्लेड के एक गोल सॉकेट में फिट रहता है। यह सॉकेट ग्लेनॉइड कहलाता है। मांसपेशियों और टेंडन का संयोजन बांह की हड्डी को कंधे के एक सॉकेट में केंद्रित रखता है। यह ऊतक रोटेटर कफ कहलाते हैं। ज्यादातर कंधे की समस्याओं का प्राथमिक कारण रोटेटर कफ में पाए जाने वाले आसपास के कोमल ऊतक का उम्र के कारण प्राकृतिक रूप से बिगड़ना है। कंधे में होने वाली इस जकड़न को फ्रोजन शोल्डर नाम से जाना जाता है। इस दर्द का कारण आसानी से पता नहीं चलता। फ्रोजन शोल्डर में कंधे की हड्डियों को मूव करना मुश्किल होने लगता है। कंधे का दर्द दिन भर की गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। फ्रोजन शोल्डर की समस्या पुरुषों की तुलना महिलाओं में दोगुनी पाई गई है। रोटेटर कफ में तकलीफ की स्थिति 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों में ज्यादा देखी जाती है। कंधों का सुन्न पड़ जाना, कंधों को घुमाने में असमर्थता महसूस करना, रात में कंधों में तीव्र दर्द होना, कंधों में होने वाली जकड़न मुख्यतः इन कारणों से हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों में, हृदय समस्या से ग्रसित लोगों में, पार्किंसंस बीमारी के मरीजों में हो सकती है। गर्दन में होने वाली सर्वाइकल डिस्क की समस्या भी ऐसे दर्द का कारण हो सकती है। वो मरीज जिन्हें कंधों पर किसी प्रकार की चोट लगी हो या कंधों की किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, उनमें फ्रोजन शोल्डर की आशंका अधिक होती है। कंधों की जकड़न में अक्सर मालिश या सेक से आराम मिलता है। अगर इसमें आराम नहीं मिलता तो यह उपाय अपनाने चाहिए। दर्द को अनदेखा न करें, यह लगातार हो तो डॉक्टर को दिखाएं। सामान्य कंधों में दर्द निवारक दवाओं से ही राहत मिल जाती है। ऐसा दर्द कंधों में सूजन के कारण होता है, इसलिए सूजन कम करने वाली दवाएं भी राहत पहुंचा सकती हैं। लेकिन दर्द की दवाओं का प्रयोग केवल आपात स्थिति में डॉक्टर की सलाह से करें। अगर फ्रोजन शोल्डर की चिकित्सा समय पर नहीं की गई तो कई बार मरीज को पूरा जीवन इस समस्या के साथ बिताना पड़ सकता है। कंधों को गर्म या ठंडा सेक दें। फ्रोजन शोल्डर की चिकित्सा का सबसे अच्छा उपाय फिजियोथेरेपी माना जाता है। फिजियोथेरेपी में कंधों में खिंचाव उत्पन्न कर कंधों को दोबारा गतिमान बनाना होता है। ऐसा करने के लिए कंधों के विभिन्न बिंदुओं को व्यायाम द्वारा धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। इस स्थिति में फिजियोथेरेपी की मशीनों जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, पुली तथा शोल्डर व्हील की मदद और मशीनों की सिकाई से जकड़न को कम किया जाता है। शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी व पुली तथा शोल्डर व्हील की मदद और मशीनों की सिकाई से जकड़न को कम किया जाता है। कंधे को जकड़न से खोलने के लिए कुछ व्यायाम की मदद ली जा सकती है, जो कि कंधे की जकड़न को कम करने व मूवमेंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे पहले दीवार के सामने खड़े होकर दीवार के सहारे हाथ को ऊपर तक ले जाएं, फिर उसी प्रकार उसे वापस नीचे की तरफ लाएं। इस क्रिया को एक बार में कम से कम 20 से 25 बार रिपीट करें और धीरे धीरे हाथ को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। इसके बाद अगली कसरत पीठ दीवार की तरफ करके खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सामने

0: उठाएं, इस प्रक्रिया को 20 से 25 बार करें। इसके बाद दोनों हाथों को साइड में सीधा करके ऊपर वहां तक ले जाएं जहां तक वह आसानी से जाए, और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। 10 से 15 बार इसे रिपीट करें। दीवार से थोड़ा दूर खड़े होकर हाथ सीधा करके उसे गोल घुमाने की कोशिश करें तथा उसके बाद गोले का आकार थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करें। इस प्रक्रिया को करीब 20 बार करें। फिर ठीक उसी प्रकार हाथ को उल्टा घुमाने की कोशिश करें। अगर थकान हो तो बीच बीच में थोड़ा आराम देकर फिर से करें। सीधा खड़े होकर हाथ को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें तथा इसे बार बार करने की कोशिश करें। इन सारी कसरत को दिन में 2 से 3 बार करें। जिन लोगों को कमर या घुटने की तकलीफ रहती है, उनको यह कसरत बैठकर करनी चाहिए, जिससे उनके पैरों या कमर पर वजन ना पड़े। जिन लोगों को कंधों में तकलीफ नहीं है, वो भी कंधे को सक्रिय रखने के लिए ये सारी कसरतों को करें, जिससे आगे आने वाले समय में कंधे के दर्द अथवा जाम होने की परेशानी से बचा जा सके।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे कंधे का जाम होना कारण और उपचार विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर राजीव शर्मा। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले।

0: पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौपालों में राजस्ववाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने IGRS और CM हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपरक निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शिकायतों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सहित ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं कल शाम को ही आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच

0: शिक्षा मंत्री ने कल वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और सीबीएसई परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान ये तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने सीबीएसई को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 28 मई को प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 स्थगित कर दिया है। एनटीए के अनुसार बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _ उपलब्ध है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: इस बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने महिलाओं के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों के हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा पर्व का आयोजन हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर PSC फ्लड PSC फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की CCTV कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
3: जैसा कि

0: की संभावना है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर कल तक के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त, यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन, यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक, जब भी आप चलाएं कोई वाहन ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आसपास। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को मां गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यह त्योहार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को पड़ता है। पुराणों के अनुसार ये वो दिन है जब हस्त नक्षत्र में मां गंगा का अवतरण हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। पृथ्वी पर गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया था। इसके बाद वे हिमालय से होती हुई धरती पर प्रवाहित हुई। आज के दिन गंगा नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि साधक के जाने अनजाने में किए गए 10 प्रकार के पाप, जैसे चोरी, हिंसा, बुरे विचार, नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धालु आज के दिन पूजा, ध्यान और दान पुण्य करके मोक्ष की कामना करते हैं।

गीत के बाद अब वक्त है खोए हुए व्यक्तियों की सूचनाओं का। क्षेत्राधिकारी आगरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार रवीना पत्नी रवि निवासी ग्राम कुंगडई थाना खैरागढ़ आगरा 15 अप्रैल 2026 से घर से लापता है। आयु 34 वर्ष कद 4 फुट 9 इंच है। ये गुलाबी सूट और पीली पायजामी पहने हुए हैं। श्रोताओं रवीना के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी आगरा को सूचित करें।

क्षेत्राधिकारी आगरा से प्राप्त एक और जानकारी के अनुसार श्रीमती पार्वती पत्नी सूरज शाक्य निवासी पंचायती पजाया टीले वाले मंदिर के पास कमला नगर आगरा से 16 अप्रैल 2026 से लापता हैं। आयु 27 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, चेहरा गोल, रंग गोरा है, माथे पर बाईं तरफ कट का निशान है। पार्वती हरे रंग का सलवार सूट पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी आगरा को सूचित करें।

निवासी ग्राम लालगढ़ी दयालबाग थाना न्यू आगरा 17 अप्रैल 2026 से घर से लापता है। आयु 28 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, चेहरा लंबा, आंखें भूरी हैं। ये पीले रंग का सूट और पीले रंग का ट्राउजर पहने हुए हैं। श्रोताओं, ज्योति के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी आगरा को सूचित करें।

एक और सूचना सुनिए। क्षेत्राधिकारी आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार ज्योति कुमारी पुत्री अमर सिंह

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: और अब सुनिए स्थानीय सूचनाएं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूबेदारगंज बांद्रा टर्मिनस सूबेदारगंज से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को और बांद्रा टर्मिनस से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को संचालित होगी। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदन के लिए परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। विवाह पंजीकरण में अब वर वधू और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार पर सत्यापन के बाद ही होगी। सभी उप निबंधक कार्यालयों में यह लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। उत्तर रेलवे में मेगा ब्लॉक के कारण ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांधीधाम भागलपुर स्पेशल, भागलपुर गांधीधाम स्पेशल, गोरखपुर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, बनारस अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ अहमदाबाद मल्होर, ऐशबाग और मानक नगर होकर संचालित होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की है। कानपुर सेंट्रल मदुरई स्पेशल ट्रेन 27 मई तक और मदुरई से 29 मई तक चलेंगी। वहीं आगरा कैंट असरवा स्पेशल ट्रेन भी संशोधित दिनों में संचालित होगी। उद्यमियों के सहयोग से सरकार प्रदेश में उद्योग एक्सप्रेस को और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। इस सपने को पूरा करने में

लघु, कुटीर व मध्यम उद्यम एमएसएमई की विशेष भूमिका होगी। लघु व कुटीर उद्यमी स्वयं सहायता समूहों को अपने साथ जोड़ें, इससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलेगा, जिससे वह सशक्त होंगी। हमें राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करना है। हरी पर्वत से मदिया कटरा तक सीएम ग्रिड योजना के तहत काम होना है। इसके लिए 700 मीटर लंबे उक्त मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद कराना पड़ेगा। यातायात पुलिस के साथ बैठक के बाद नगर निगम की उक्त मार्ग को चौड़ा करने की योजना है, जिससे कि मार्ग में वन वे करने पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति पैदा न हो। हरी पर्वत चौराहे पर मेट्रो पिलर के निर्माण को बैरिकेटिंग के चलते वाहनों का अतिरिक्त दबाव है। चौराहे पर यातायात को मैनुअल तरीके से संचालित किया जा रहा है। ऐसे में सीएम ग्रिड योजना के तहत हरी पर्वत से मदिया कटरा तक सड़क की खुदाई करने पर भीषण जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। नगर निगम के अधिकारियों से सड़क चौड़ी करने के बाद कार्य आरंभ करने को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने बीएड के परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया है। बीएड प्रथम वर्ष प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक बढ़ा दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्ययन परिषद और संकाय परिषद की संस्तुति के बाद नई व्यवस्था के तहत बीएड प्रथम वर्ष में पहले चल रहे बीडी 106ई सोशल साइंस एक और बीडी 106F की जगह अब केवल बीडी 106E सोशल साइंस विषय पढ़ाया जाएगा। बीएड प्रथम वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा अब 50 अंक की बजाय 150 अंक की होगी। इसमें इंटर्नशिप एक, इंटरनल असेसमेंट और सेशनल वर्क शामिल रहेगा। वहीं बीएड द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा के अंक घटाकर 350 से 200 कर दिए गए हैं। इसमें इंटर्नशिप दो और बायवा वाइज को शामिल किया गया है, जिनके लिए 150 और 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। उनके अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य बीएड छात्रों को अधिक व्यवहारिक प्रशिक्षण देना और शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। नई व्यवस्था से छात्रों को स्कूल इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल कार्यों का ज्यादा अनुभव मिलेगा। आगरा कॉलेज में वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान विभाग की प्रायोगिक परीक्षाएं 26 मई से शुरू होंगी। सभी प्रायोगिक परीक्षाएं संबंधित विभागों में ही संपन्न कराई जाएंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमएससी अष्टम सेमेस्टर की वॉटनी प्रायोगिक एवं शोध परियोजना परीक्षा 26 मई को सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी। वहीं बीएससी द्वितीय सेमेस्टर की वॉटनी प्रायोगिक परीक्षा 29 मई को सुबह 10 बजे से संपन्न होगी। इसी तरह ही रसायन विज्ञान विभाग द्वारा बीएससी द्वितीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन 30 मई को सुबह 9 बजे से किया जाएगा। परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए इन परीक्षाओं को विभिन्न बैचों में विभाजित किया गया है। समूचा प्रदेश इस समय झुलसा देने वाले दिन और परेशान करने वाली रात की मार झेल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए सूबे के 47 से अधिक जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आगरा में 29 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। रविवार को अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शनिवार को यह 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री अधिक होकर 28.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये तो थी स्थानीय सूचनाएं और अब कार्यक्रम में चलते चलते आइए सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आसपास यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार

0: अंशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1 लाख से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष

0: शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौताओं को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोर्ट के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड हैं। बकिया पद्म अवार्ड इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। यह अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। यह अवार्ड लोगों के इम्तियाजी कामों के एतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, सामाजिक काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत और सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: अपनी इन नशियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और जिंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबायली हकूक खत्म नहीं होंगे।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि कबायली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है।

जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार दिबांशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस जीत से बीजेपी के तई मगरबी बंगाल के अवाम के पुख्ता अजम का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्तलिफ शोबों में मगरबी बंगाल सरकार का गैर मामूली काम देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस पार्टी को मजीद काम सौंपने का फैसला किया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कारकुनों की उनके गैर मामूली काम पर सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए सभी लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। पेट्रोल की कीमत में आज 2.61 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। यह इजाफा 2 हफ्ते में चौथी बार है, लिहाजा अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए और डीजल की कीमत 95.20 रुपए फी लीटर होगी। इम्तिहानात मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने इस माह की 28 तारीख को होने वाले यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए दाखिले के मुश्तरका इम्तिहान 2026 को मुलतवी कर दिया है। एनटीए ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नजर यह फैसला किया गया है। एजेंसी ने बताया कि अब इस इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। एनटीए ने उम्मीदवारों को ताजा जानकारी के लिए उसकी बाजाब्ता वेबसाइट देखने का मशवरा दिया है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाब के पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपीज हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसीक कर दी है जो कल तक थी। सीबीएसई ने कहा कि यह फैसला इस मकसद से किया गया है कि तलबा को अपनी दरखास्तें दाखिल करने के लिए पूरा वक्त मिल सके। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल को की खामियों को दूर करने के लिए सीबीएसई की मदद की गरज से आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला सीबीएसई के नतीज के बाद की खिदमत से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालदेन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नजर किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा कि आईआईटीज के माहिरीन की यह टीम निजाम में तकनीकी बेहतरी लाने नीज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारदगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए करेगी। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल माली और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से बातचीत की। ये बातचीत सीबीएसई के बाद के नतीज और जवाब के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल के दौरान तलबा को दरपेश तकनीकी और अदायगी से मुतालिक मामलात के बारे में की गई है। वजारत तालीम ने बताया कि इस बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई को इसकी अदायगी के निजाम और इम्तिहानात के बाद की खिदमत से मुतालिक पोर्टल को लाजमी तौर पर मरबूत किए जाने में मदद देंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से शदीद तौर पर लड़ना चाहते हैं। कल नई दिल्ली में अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को दहशतगर्दी हरगिज बर्दाश्त न करने के बारे में हमेशा वाजह रहना चाहिए और इसी वजह से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उनका तआवुन निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी आलमी मईशत को दरपेश खतरात को खत्म करने और दुनिया को मजीद मौके फराहम करने में है। वजीर खारजा ने कहा कि बहुत से मौके ऐसे होते हैं जिनसे दोनों मुल्कों को बहुत से मैदानों में मौसर दिफाई शराकतदार बनने के मौके मिलते हैं। अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो के दौरे का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस दौरे से मौजूदा दौर में भारत अमरीका ताल्लुकात की अहमियत का इजहार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक साल पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों की पायदार शराकतदारी को मजीद फरोग देने का एक रास्ता कायम किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर को फोन किया। उन्होंने ये फोन कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में अमरीका की आजादी के 250 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब के दौरान किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी इतने करीबी नहीं रहे।

जनाब ट्रंप ने कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, यहां तक कि उन्होंने खुद को वजीर आजम मोदी का एक बिग फैन करार दिया। जनाब ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमरीकी सफीर ने अपने फोन का रुख माइक्रोफोन की तरफ कर दिया ताकि सामईन ट्रंप की ये बातें सुन सकें। इस तकरीब में वजीर खारजा एस जयशंकर, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के सफीर सर्गियो गोर ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने यह रायदानी अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत के 4 रोजा दौरे के दौरान की है। जनाब रूबियो ने वजीर आजम मोदी से हफ्ते को मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी पेशरफ्त की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे में

0: ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी पेशरफ की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी और यह मुआहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियाई मुआहदे की सख्त नुक्ताचीनी की। नीज ये दावा किया कि उनकी तरफ से मुजवजा मुआहदा तेहरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकेगा और यह मुआहदा साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की तरफ से किए गए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोजा मनासिक हज का आगाज हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर से 16 लाख से ज्यादा आजमीन हज सऊदी अरब में मक्का मौजमा से मीना के लिए रवाना हो रहे हैं। वो मीना में रात के क्याम के बाद कल सुबह वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,000 आजमीन फरीजा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आजम ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद पर महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अखबार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। इसी अखबार ने भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को एबोला वायरस के तई मोहतात रहने के मशवरे से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफे पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तहानात मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म होता है।

इस समय सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं गंगा की लहरें फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना को संगीत से संवारा है चित्रगुप्त ने।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।

अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, गंगा की सौगंध फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफी और साथियों ने। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आपने सुना गीत गाता चल फिल्म का गीत जसपाल सिंह और साथियों के स्वर में। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत विधाता फिल्म से। इसे गाया है सुरेश वाडकर और अनवर ने। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: अब आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में अनजान की लिखी रचना को ईश्वर फिल्म से। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: तार सप्तक, मंद्र सप्तक,

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 9:15 होने को हैं। हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं जिले की हलचल।

0: की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
1: कन्नौज जिले में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान 41 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए शासन ने बजट आवंटित किया है। इस धनराशि से प्रशासन ने जिले के तीनों रोडवेज बस स्टॉप पर दो दो कूलर लगवाए हैं। इसके साथ ही गुड़ और

0: गैस की व्यवस्था भी की गई है। आम जनता की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट में भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। यहाँ भी लोगों को शीतल जल के साथ साथ गुड़, पेठा और गट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्नोत्री ने बताया कि लोगों को गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
1: जनपद कन्नौज में रोडवेज बस स्टैंड कन्नौज, गुरसाहेगंज और छिबरामऊ, तीन जगहों पर हम लोगों ने दो दो बड़े कूलर लगवाए हैं। साथ ही साथ इन जगहों पर गुड़, पानी और ORS के पैकेट भी रखे गए हैं। नगर निकाय की ओर से इसमें कर्मचारी भी लगाए गए हैं। 24 घंटे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। जो नागरिक आते हैं वो बुला करके और हम लोग देख करके उनको स्वच्छ पेयजल भी देंगे, साथ ही साथ उनको ORS के पैकेट भी रहेंगे। इस समय चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, नागरिक सुरक्षित रहें, वो जागरूक रहें और उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए इस प्रकार की की जा रही हैं।
0: कन्नौज जिले में इस प्राय अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत जनपद के 11 चयनित विद्यार्थियों में निहित वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को सराहा जा रहा है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को मॉडल और प्रोजेक्ट के रूप में साकार कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। जिला प्रशासन विद्यार्थियों के अभिनव मॉडल और प्रोजेक्ट को पेटेंट कराने, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है। कन्नौज जिले में संसाधनों का सम्मान अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पर अंकुश लगेगा। अभियान के तहत लोगों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पाने पर सूचना कमांड सेंटर 1077 पर दें। दिन में जलती हुई स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थानों पर बहता पानी, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिसरों में अनावश्यक रूप से जल रही लाइटें, जागरूक नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा ताकि समाज में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना मजबूत हो सके। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि संसाधनों की बचत केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जन सहभागिता से ही जिले को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है। कन्नौज जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत शिवरामऊ में 100 और उमरदा में 116 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब तकनीक से सशक्त होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एवं सहायिकाएं मात्र शिशु पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित सेवाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचा सकेंगी। यह पहल सहायिकाओं के उत्साहवर्धन के साथ आंगनबाड़ी सेवाओं के डिजिटलीकरण और सुदृढ़ क्रियान्वयन की दिशा में एक सार्थक सिद्ध होगी। कन्नौज जिले में वेटलैंड के संरक्षण के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में इस्माइलपुर, रोंसा और निघो खास में एवं असेह में स्थित वेटलैंड को अधिसूचित किए जाने का काम शुरू हो चुका है। आर्द्रभूमि शक्तिशाली कार्बन सिक है, जो किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मदद मिलती है। जनपद में 100 वेटलैंड चिन्हित किए गए हैं। इन वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने वेटलैंड के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। कन्नौज जिले की 499 ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू होगी। योजना को साकार करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वर्तमान में करीब 1,00,000 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें नई व्यवस्था के तहत रोजगार और आजीविका से जोड़ा जाएगा। नई योजना के तहत मनरेगा की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार स्थायी आजीविका और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर होगा। योजना के तहत श्रमिक परिवार की महिला सदस्य को जॉब कार्ड में शामिल कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद में 25,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी है। मजदूरी का भुगतान सीधे महिलाओं के बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। पुराने 100 दिनों के प्रावधान के बजाय अब हर ग्रामीण परिवार के सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पुराने मनरेगा जॉब कार्ड की जगह अब नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीकी विशेष सुविधा होगी। हर गांव में विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार होगा। ग्राम सभा की मंजूरी के आधार पर विकसित कार्य होंगे। कन्नौज जिले में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 51 परिवारों को 1,97,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता को शासन ने स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त बजट के सापेक्ष पात्र दावेदारों को जल्द आर्थिक सहायता मिलेगी।
2: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
3: पीलीभीत जिले में इस समय भी

0: भीषण गर्मी से हर कोई बेहाल है। इसके चलते स्कूल कॉलेजों में अवकाश कर दिया गया है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गर्मी से बचाव हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
1: सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाए हैं और पानी की व्यवस्थाएं की हैं। जितने वाटर कूलर थे नगर पालिकाओं के टाउन एरिया के, वो हम लोगों ने सही कराए हैं और निर्देशित किया सभी ईओ को कि वो एक बार चेक करा लें जो जो वाटर कूलर शहर में लगे हुए हैं उनमें प्रॉपर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और खासतौर से बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्थाएं कराएं। और ग्राम प्रधानों से भी हम लोगों ने अपील की है कि वो गाँव में भी देख लें कि कोई भी जानवर प्यासा न रह जाए, इसलिए जो भी तालाब है हमारे और सार्वजनिक स्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों के उनकी भी व्यवस्था की गई है।
0: गर्मी का असर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। बाघ हिरण आदि जीव जंगल से बाहर खेतों व सड़कों पर टहलते नजर आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्य जीवों की प्यास बुझाने हेतु सभी ताल पोखरों को नहर व नालों के जरिए भरवाने की व्यवस्था की है। प्रभागीय वन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि जंगल के बीच कई तालाबों को सौर ऊर्जा चालित पंपों से भी भरा जा रहा है। पीलीभीत में एक जनपद एक नदी योजना के तहत गोमती व खन्नौर नदियों का पुनरोद्धार कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, विधायक बाबूराम पासवान व स्वामी प्रवक्तानंद, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस नेक कार्य में योगदान दे रहे हैं। बाघ और बांसुरी के साथ पीलीभीत की पहचान बासमती उत्पादन के लिए भी है। जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से अब बासमती की महक और बढ़ने जा रही है। जिले में बासमती बीज उत्पादन शोध व निर्यात केंद्र की स्थापना करोड़ों की लागत से कराई जा रही है। इस केंद्र को 7 एकड़ जमीन हस्तांतरित कराने के अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा,
2: ये जो बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र और सह प्रदर्शन का फार्म जो बनेगा, ये इस क्षेत्र के लिए मेरे लिए कहने की मुझे गर्व महसूस होता है कि ये पीलीभीत जनपद बांसुरी के लिए जाना जाता है। ये पीलीभीत जनपद यहाँ के प्राकृतिक धरोहर जंगल है, यहाँ के शेर है, उसके लिए जाना जाता है। मगर आने वाले समय में ये बासमती चावल का जो कटोरा है उसके लिए जाना जाएगा।
0: पीलीभीत जिले में डीजल पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने जिले की आपूर्ति व वितरण व्यवस्था को सामान्य व नियंत्रण में बताया है। उन्होंने लोगों से डीजल पेट्रोल व कुकिंग गैस की अनावश्यक खरीद व भंडारण से बचने को कहा है। पीलीभीत जिले में पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत भजन कीर्तन यज्ञ व भंडारों जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तकिया दीनारपुर स्थित महाकाली मठ व पीताम्बरा पीठ पर महंत बाबा सूरजगिरी जी द्वारा सचंडी महायज्ञ कराया गया। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर मंदिरों पर सुंदर हनुमान चालीसा व भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। पीलीभीत में इस समय साठा धान व गन्ने की फसल खेतों में हरियाली बिखेर रही है। गन्ने की उपज का सर्वे गन्ना विकास विभाग द्वारा शुरू करा दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी खुशी राम भार्गव ने बताया,
3: वर्तमान में गन्ना सर्वे का काम चल रहा है। पूरे जनपद में 144 टीमें बनी हुई है और ये 144 टीमें जनपद की चीनी मिले और जो जनपद से बाहर की चीनी मिले हैं उनका गन्ना सर्वे कर रही है। गन्ना सर्वे का काम गन्ना पर्यवेक्षकों द्वारा किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पूरनपुर, बीसलपुर, बरखेड़ा और मझोला के द्वारा की जा रही है। सभी जो किसानों का सर्वे होना है वो 30 जून तक सर्वे होना है। 1 मई से सर्वे की शुरुआत हुई थी और 30 जून तक गन्ना सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाना है।
0: पीलीभीत जिले में जनगणना 2027 के तहत इस समय मकानों की गिनती का कार्य तेजी से चल रहा है। 7 से 21 मई के बीच ऑनलाइन माध्यम से सुगणना की गई और अब गणना कर्मी घर घर जाकर गणना कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कई जगह इसका निरीक्षण भी किया है।
4: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
5: अभी आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुन रहे थे जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मंजूषा। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं महल फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। जे नक्शब के गीत को संगीत दिया है खेमचंद्र प्रकाश ने।

अभी आपने सुना महान फिल्म का गीत आरडी बर्मन, आशा भोसले और साथियों के स्वर में। अनजान के गीत को संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों के स्वर में शैलेंद्र का लिखा गीत मधुमती फिल्म से। संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में माँ बेटा फिल्म का गीत। प्रेम धवन के गीत को संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में माँ बेटा फिल्म का गीत। प्रेम धवन के गीत को संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

माँ बेटा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इसमें आइए सुनते हैं रामदास बालक चटपटा और साथियों के गाए लोकगीत।

इस समय आप सुन रहे हैं रामदास बालक चटपटा और साथियों के गाए लोकगीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत। कलाकार हैं एक बार फिर रामदास बालक चटपटा और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे रामदास बालक चटपटा और साथियों के गाए लोकगीत। इसके साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है सुर सरिता। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आप सुनिए माचिस फिल्म का गीत, ए हरिहरन सुरेश वाडकर, विनोद सहगल और केके की आवाज में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है विशाल ने।

अभी आप सुन रहे थे माचिस फिल्म का गीत ए हरिहरन, सुरेश वाडकर, विनोद सहगल और केके की आवाज में। विशाल के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा था गुलजार ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लगान फिल्म से। आवाजें हैं एआर रहमान, श्रीनिवास और साथियों की। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं ए आर रहमान।

इंदिवर की शब्द रचना को आवाज दी थी कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों ने। संगीत दिया था राजेश रोशन ने। फिल्म थी कोयला। कोयला फिल्म के गीत के बाद आपको सुनवा रहे हैं प्रेम ग्रंथ फिल्म का गीत। आवाजें हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

कार्यक्रम सुर सरिता आप आकाशवाणी के आगरा केंद्र से सुन रहे थे। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राका मुखर्जी का राग ललित में ख्याल गायन।

श्रोताओं, अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राका मुखर्जी का राग ललितमय ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम आज के कलाकार अपने रेडियो साथी नीतू दुबे के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस रेडियो के सफर पर और सुनते रहिए अपने पसंदीदा कार्यक्रम। साथियों, तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आजकल गर्मी के तेवर बहुत ज्यादा ही गर्म है, तो ऐसे में आप अपने को जरा ठंडा रखिए जिससे आपको कोई परेशानी न हो। तो साथियों, जितना हो सके पानी और मौसमी फलों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए और कोशिश कीजिए कि बिना काम के धूप में ना निकलें, तो ही बेहतर है, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता हमारा स्वास्थ्य ही है। तो चलिए साथियों, अब रुख करते हैं अपने आज के इस कार्यक्रम पर, यानी कि आज के कलाकार पर। तो साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सादगी भरे होते हैं लेकिन उनका काम बोलता है। जी हाँ, हिंदी सिनेमा जगत में सुनील दत्त एक ऐसी ही शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय के लगभग 4 दशक तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके किरदार वास्तविक जीवन के बहुत करीब होते थे।

तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सुनील दत्त के किरदार वास्तविक जीवन के बहुत करीब होते थे और उनका व्यक्तित्व भी उनके किरदार की तरह उज्जवल और प्रभावशाली रहा। साथ ही उनका जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम जिले के खुद्दी गांव में हुआ था। सुनील दत्त बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते थे। साथियों, बलराज साहनी फिल्म इंडस्ट्री में उन दिनों अभिनेता के रूप में स्थापित हो चुके थे, क्योंकि इनका नाम भी बचपन में बलराज दत्त था। इसको देखते

हुए इन्होंने अपना नाम बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रख लिया, जो कि उनकी पहचान बना। इनका बचपन यमुना नदी के किनारे मंदाली गांव में बीता, जो हरियाणा प्रदेश में है। इसके बाद वे लखनऊ चले गए। कुछ दिनों बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए वे मुंबई आए।

साथियों, कहते हैं ना कि बड़ी मेहनत से व्यक्ति अपने मुकाम तक पहुंच पाता है। मुंबई आकर सुनील दत्त ने मुंबई परिवहन सेवा में बस डिपो में चेकिंग क्लर्क के रूप में काम किया, जहां उनको 120 रुपए महीने के मिलते थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए 1955 से 1957 तक इन्होंने बहुत संघर्ष किया। सिनेमा जगत में अपने पैर जमाने के लिए वे जमीन की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहे। उसके बाद जय हिंद कॉलेज से पढ़कर उन्होंने स्नातक किया। पता है, सुनील दत्त ने रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा के उद्घोषक के तौर पर अपना करियर शुरू किया, जहां वे फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे और एक इंटरव्यू के लिए उन्हें 25 रुपए मिलते थे। किसी भी मुकाम को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और पता है, मेहनत करके जब अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो खुशी भी बहुत मिलती है।

साथियों, ऐसे ही सुनील दत्त मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहे। इनकी पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने अभिनेता के रूप में काम किया। उनको इस फिल्म से कुछ खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी कई छोटी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से भी कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। लेकिन समय के साथ बहुत सी चीजें बदलती हैं, तभी तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। जरूरी नहीं कि पहले प्रयास में ही सबको सफलता मिल जाए, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे ही 1957 में प्रदर्शित हुई फिल्म मदर इंडिया, और इस फिल्म से ही सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में एक खास पहचान मिली और लोकप्रियता मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक बिरजू की भूमिका निभाई जो गांव में सामाजिक व्यवस्था से काफी नाराज है, और इसी की वजह से विद्रोह करके वो डाकू बन जाता है। इस फिल्म में नकारात्मक हीरो का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई।

साथियों, अभिनय वही होता है जो दिल को छू जाए, और सुनील दत्त का अभिनय ऐसा ही था। 1965 में इनकी वक्त फिल्म प्रदर्शित हुई और सुपरहिट रही। उनके सामने इस फिल्म में बलराज साहनी, राजकुमार, शशि कपूर और रहमान जैसे नामी सितारे थे। इसके बावजूद सुनील दत्त ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इनके करियर का 1967 का साल सबसे महत्वपूर्ण रहा। उस साल उनकी मिलन, मेहरबान और हमराज जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें उनके अभिनय के नए रूप देखने को मिले। और इन फिल्मों की सफलता के बाद वे अभिनेता के रूप में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से हैं जिनकी फिल्मों ने 50 और 60 के दशक में दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। सुनील दत्त की मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, शान, बदले की आग, राज तिलक, काला धंधा, गोरे लोग, वतन के रखवाले, परंपरा और क्षत्रिय जैसी फिल्में शामिल हैं। साथियों, फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद समाज सेवा के लिए उन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया। 1968 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्मों के पहले एंग्री यंग मैन और राजनीतिक तौर पर एक आदर्श नेता सुनील दत्त का 25 मई 2005 को हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। लेकिन एक आदर्श नेता और मदर इंडिया के बिरजू के अभिनेता हमारे दिलों में हमेशा मौजूद रहेंगे।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम आज के कलाकार अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसमें हम आपसे आज बात करेंगे स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन विषय पर और जीवन दायिनी नदियों का धार्मिक सामाजिक और आर्थिक महत्व विषय पर। तो साथियों, बातें शुरू करने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, जेठ की तपती धूप पड़ रही है, मौसम गर्म है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। और पता है, जब हमारा स्वास्थ्य सही नहीं हो तो कितना ही जरूरी काम क्यों न हो, हमारा मन ही नहीं लगता। इसलिए अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए हमारा स्वास्थ्य। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें। जैसे हल्का और सुपाच्य भोजन करें, तले भुने खाने से तो अभी दूर ही रहें। गर्मी है तो ऐसा भी ना करें कि बहुत ठंडी ठंडी चीजों का ही सेवन करें, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम करें, इसकी जगह छाछ, लस्सी, मौसमी फलों का सेवन करें, जिससे आपके शरीर का तापमान ठीक रहे। जब शरीर का तापमान ठीक रहेगा तो होगा क्या, आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप ऐसे ही गुनगुनाएंगे।
1: ठंडे ठंडे पानी से

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

जी हाँ साथियों, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी गुनगुना पाएंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस अपनी डाइट में हरी सब्जियां, ताज़े फल, नट्स और साबुत अनाज शामिल करें। पानी पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। पता है पानी शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को ठीक रखता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि फिट रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक, योगा या कोई भी शारीरिक गतिविधि करना जरूरी होता है। साथियों, इसके साथ ही 7-8 घंटे की नींद भी जरूरी है, क्योंकि ये मानसिक शांति और शारीरिक रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। और तनाव से दूर रहें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का असली आनंद ले सकता है। तो खुश रहें और स्वस्थ रहें।

नदियों का संरक्षण हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना है। साथियों, गंगा दशहरा जैसे पर्व हमें जीवनदायिनी नदियों की स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। पुराने समय से ही नदियां मां की तरह हमारा भरण पोषण करती आ रही हैं। नदियों की वजह से सभ्यताएं पनपती हैं, बस्तियां बसती हैं और कहानियां बनती हैं। ये नदियों का कल कल निनाद करता हुआ जल ही जो पृथ्वी और मनुष्य की प्यास बुझाता है, तभी तो इसे अमृत कहा जाता है।

तो साथियों, आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। तो ये तो हुई स्वास्थ्य की बात, और अब हम बात करते हैं नदियों के बारे में। साथियों, नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि जीवन दायिनी और पूजनीय हैं। इनमें से मां गंगा पवित्र और मोक्षदायिनी है। शास्त्रों के अनुसार नदियों में स्नान करने से दैहिक, दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं।

साथियों, नदियां हमें जीवन देती हैं और बदले में हम नदियों को क्या दे रहे हैं? प्लास्टिक, कचरा, शायद ईश्वर के इस अनमोल खजाने को सहेजने के लिए हम गंभीर नहीं हैं, क्योंकि हमें इसकी महत्ता का अंदाजा नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि नदियों को स्वच्छ और संरक्षित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नदियों का हमारे जीवन में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है। पता है, गंगा नदी बारहमासी है। इसमें साल भर पानी बहता रहता है, जिसके चलते इसके आसपास के क्षेत्रों में धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू, गेहूं, सरसों और जूट जैसी फसलों की पैदावार अधिक मात्रा में होती है। ये फसलें देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करती हैं। गंगा किनारे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कई पर्यटन स्थल हैं, जो राष्ट्रीय आय में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

हैं। नदियां वन्य जीवों को आश्रय देती हैं और जंगलों व पर्यावरण में पानी का संतुलन बनाए रखती हैं। नदियों का हमारे धार्मिक जीवन में भी बहुत महत्व है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा राजा भागीरथ के कड़े तप से प्रसन्न होकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस पावन अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। यह भी माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है।

साथियों, नदियों को स्वच्छ रखना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तभी हम नदियों को बचा पाएंगे, क्योंकि इनसे ही जीवन है। इसलिए हम सबको ये सोचना चाहिए कि नदियों में कचरा गंदगी ना होने दें, क्योंकि ये नदियां हमें जीवन देती हैं, इनसे ही हमें जल मिलता है। और हमें ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों, पृथ्वी, पेड़ पौधे, सब कुछ जल से ही संचित होते हैं। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम नदियों को बचाएं, तभी हम नदियों को बचा पाएंगे, क्योंकि इनसे ही जीवन है। इसलिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे कि नदियों को स्वच्छ रखें और इसका संरक्षण करें। साथियों, गंगा दशहरा हमें ये त्योहार प्रकृति के प्रति सम्मान और नदियों के संरक्षण का भी संदेश देता है। तो साथियों, इसी के साथ हम आज का अपना ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब यहीं संपन्न करते हैं। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को है। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं।

0: क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
0: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों।
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है।
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है।
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर

0: दूर भागा भागा वहां आया।
1: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
2: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
1: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ,
7: ये क्या हुआ?
6: अरे
7: बचो बचो बचो,
6: फट जाएगा,
7: सब निकालो, पीछे
6: हटो, जमीन पे लेटो, बाहर निकल जाओ, वो निकल जाओ, वो निकल
2: जाओ। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
7: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
7: बहादुर सैनिक हो तुम।
8: हाँ।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के

0: समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
1: मे आई कम इन सर?
2: यस, कम इन।
1: सर,
2: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
1: सर,
2: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
1: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, कहो।
1: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
2: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: गो अहेड यंग मैन।
1: सर,
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
7: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
1: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
1: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन, निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
1: फायर!
5: सर, ये टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर। बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर! समय मत गवाओ, फायर!
5: सर, ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल। अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल। फायर!
5: यस सर।

0: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
0: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला तराना ये सुनते हैं लव आजकल फिल्म से। राहत फतेह अली खां के स्वर में गीत रचना इरशाद कामिल की है और संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात।

0: 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। आइए अगला तराना सुनते हैं कंपनी फिल्म से अल्ताफ रजा के स्वर में।

श्रोताओ, अभी आपने ये तराना सुना। आइए अब सुनते हैं उरी फिल्म से ये तराना। यासिर देसाई

श्रोता, इसी के साथ नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद के तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अमन व अमान और इंतजामी कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हर तरक्याती ब्लॉक की सतह पर हफ्ता वाराना चौपाल मुनक़िद करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि इन चौपालों में रेवेन्यू के तनाज़ात, घरेलू तशद्दुद, गैर कानूनी वसूली और मकामी सतह की शिकायत का मौके पर ही हल यकीनी बनाया जाए। IGRS और CM हेल्पलाइन के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत के मेयारी और तसल्ली बख्श निपटाने पर जोर देते हुए जनाब योगी ने कहा कि शिकायत में किसी भी सतह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि गंगा दशहरा और बकरीद के सिलसिले में मजीद चौकस रहें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल एक आला सतही जायजा मीटिंग में रियासत के पुलिस निज़ाम को मजीद महफूज, जदीद और तकनीकी बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को मजबूत करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस के मकाम नकलो हरकत और मवासलाती सरगर्मियों की राजदारी अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा कल शाम महकमा आयुष की एक जायजा मीटिंग में वजीर आला ने आयुष सेहत और फलाह बहबूद की पॉलिसी 2026 को मुअसर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने कल लखनऊ में वाकई पार्टी सदर दफ्तर पर सभी सीनियर अहदेदारों, कोऑर्डिनेटर्स और जिला सदूर के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। इस दौरान BSP सरबराह ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि रियासत में एक बार फिर BSP की हुकूमत बनाने के लिए कारकुन अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में नए नए चैलेंजेस के दरमियान जिस तरह इंतखाबात हो रहे हैं उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों की हर सतह पर और भी चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद बनाने की ज़रूरत है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा त्यौहार का इनेकाद हो रहा है। इसे देखते हुए पुलिस इंतजामिया ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला इलाके में सख्त चेकिंग की। वहीं अमरोहा में भी कौमी शाहरा पर कल से ही रूट डायवर्जन नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर PSC, फ्लड PSC, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की CCTV कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: पेट्रोल की कीमतों में आज 2 रुपए 61 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में यह गुज़िश्ता 2 हफ्ते में चौथा इजाफा है। अब लखनऊ में पेट्रोल 101 रुपए 89 पैसे और डीजल 95 रुपए 36 पैसे फी लीटर मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को मुजव्वजा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 मुलतवी कर दिया है। NTA के मुताबिक बकरीद की छुट्टी की तारीख में तब्दीली को देखते हुए ये फैसला किया गया है। 5 रोज़ा सालाना हज मगरबी एशिया में तनाव के दरमियान आज से शुरू हो रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया से 10,60,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से हज का सफ़र शुरू करेंगे और मीना में

0: कयाम करेंगे। मिना में रात गुजारने के बाद आज़मीन हज कल अलसुबह अराफात के लिए रवाना हो जाएंगे। इस साल हज में भारत से तकरीबन 1,75,000 हाजी शिरकत कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने रियासत में शदीद गर्मी और लू का असर जारी रहने का इंतबाह जारी किया है। लखनऊ के मौसम साइंस मरकज के सीनियर साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि रियासत में गर्मी का कहर बढ़ने का इम्कान है।
1: जैसा कि पिछले

0: होने की संभावना है।
1: महकमा मौसमियात ने मशरकी उत्तर प्रदेश में दिन के वक्त कुछ मकामात पर कल तक के लिए जबरदस्त लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। बहनों, मैं हूं अर्चना, आज के कार्यक्रम की होस्ट और आपकी रेडियो सखी। बहनों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत से अलग अलग सेगमेंट्स जिन पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही शेयर करेंगे एक रेसिपी, तो तैयार रहिएगा पेन और नोटबुक के साथ। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा, चार दीवारी से खेल के मैदान तक महिलाएं, ये विषय है आज की चर्चा का। बहनों, आज विश्व फुटबॉल दिवस है और हम बात करेंगे खेलों की, जिसमें सिर्फ गेंद ही नहीं दौड़ती बहनों, सपने भी दौड़ते हैं। और खास बात यह है बहनों कि मैदान अब सिर्फ लड़कों की दुनिया नहीं रहा, आज लड़कियां भी उन मैदानों पर गोल दाग रही हैं। पहले माँ लड़कियों को सिखाती थी कि बेटी रोटी गोल बनाओ, लेकिन आज बेटियों ने रोटी के साथ साथ गेंद को भी गोल घुमाना सीख लिया है। बहना, खेलों ने महिलाओं को सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं बनाया, उन्हें मजबूत भी बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है और सबसे ज्यादा सपने देखना और उन पर भरोसा करना भी सिखाया है। आज गांव की गलियों से, शहरों से निकलकर बेटियां घर परिवार देश का नाम रोशन कर रही हैं। बहनों, जब एक बेटी मैदान में उतरती है तो सिर्फ खेल ही नहीं खेलती बल्कि समाज की सोच भी बदलती है। बहनों, आज महिलाएं घर की चार दीवारी की बंदिशों को तोड़कर बाहर निकली हैं, उसकी वजह है परिवार और समाज की बदलती सोच। खेल कोई भी हो, आज हर जगह हमारे देश की महिलाएं अपने देश का परचम लहरा रही हैं। सानिया मिर्जा हो, मैरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, साइना नेहवाल, दीप्ति शर्मा और ना जाने कितनी महिलाएं मैदानों में अपना हुनर दिखा चुकी हैं और ना जाने कितनी अभी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो बहनों, अब हमें ये नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे बल्कि अब हमें सोचना है कि अब हम क्या करेंगे। हम तो अपने देश की गौरवान्वित बेटियों के लिए यही कह सकते हैं कि बेटियों को पंख तो दीजिए, वह उड़कर नहीं खेलकर इतिहास बनाएंगी। बहनों, हमारे भारत की मिट्टी में सिर्फ फसलें ही नहीं उगती बल्कि कला, संस्कृति और परंपराओं की खुशबू भी बसती है। हमारे देश की हस्तकलाएं, हमारे इतिहास, हमारी मेहनत, रचनात्मकता

और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। इसी विषय पर आज हमारी इसी धरोहर के महत्व को समझाने का प्रयास कर रही हैं हमारी आज की वार्ताकार छवि शिवहरे, और आज की वार्ता का विषय है हमारी हस्तकला हमारी पहचान। लेकिन बहलो हम वार्ता सुने उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक।

कला कलाकारों के हाथों द्वारा बना वह शिल्प है जो देश की सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक होता है, जिन्हें हमारे शिल्पकारों ने श्रम व कौशल से गढ़ा है। प्रत्येक शिल्पकार अपने आसपास घटने वाली जीवन की घटनाओं को अनुभव करता है और अपनी विचारशीलता से कागज व कैनवस पर रंगों से आकृतियों को जीवित कर देता है। अपने अंतर्मन में अंकित कलाकृतियों को साकार कर पत्थर, लकड़ी, तांबा, चांदी, पीतल व एल्युमिनियम आदि धातुओं को आकार देता है। बहनों, हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों की हस्तकलाएं हमारी पहचान है, जैसे उत्तर प्रदेश की लखनवी कढ़ाई, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, आगरा का चमड़ा व कारपेट का काम, पश्चिमी बंगाल की कांथा कढ़ाई, काली मिट्टी व जूट क्राफ्ट, कर्नाटक की मैसूर सिल्क और पेंटिंग, राजस्थान में लाख व लकड़ी की पच्चीकारी, बंधेज पेंटिंग व रत्न आभूषण, मणिपुर का बैत का कार्य, तमिलनाडु का कढ़ाई स्टोन वर्क, आंध्र प्रदेश की कढ़ाई व लाख का कार्य, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, झारखंड की बांस की टोकरी, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की मिट्टी शिल्प, धातु शिल्प व काष्ठ शिल्प, इन सभी प्रदेशों की हस्त निर्मित वस्तुओं व कलाकृतियों को देख मन रोमांचित हो उठता है। हस्तकला रंगों व धातुओं के द्वारा तैयार करने वाले कारीगरों की विचारशीलता व सांस्कृतिक पहचान का आईना है। भारत के ऊनी कालीन, जरी की कढ़ाई के वस्त्र, रेशम के वस्त्र, टेराकोटा के उत्पादन ने अपनी पहचान को कायम रखा है। प्राचीन समय में इन हस्तकलाओं को पश्चिम एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि देशों में निर्यात किया जाता था। आज भी हस्तकलाकारों की यह संपदा विदेशों में भारत का गौरव बढ़ा रही है। युगों से भारतीय शिल्पकारों ने भारत की संस्कृति व इतिहास को अपनी हस्तकला से आज तक जीवित रखा है। भारत की भव्य सांस्कृतिक विरासत और परंपरा की झलक हमारे देश की हस्तकला द्वारा निर्मित वस्तुओं व कलाकृतियों में दिखाई पड़ती है। एक साधक की तरह शिल्पकार अपने ही औजारों के साथ मानव जीवन को सरल, सहज व अति सुंदर बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है। आज समस्त सृष्टि जिस रूप में दिखाई दे रही है, उनमें हमारे शिल्पकारों के खून पसीने के परिश्रम का योगदान है। मानव सभ्यता को नया आयाम देने का कार्य हमारी हस्तकलाओं ने किया है। भारतीय राजाओं के साथ साथ भारत में शासन करने वाले विदेशियों ने भी भारतीय हस्तकलाओं व कलाकारों की सराहना की, लेकिन औद्योगिकरण के नाम पर कुटीर उद्योगों की बलि चढ़ा दी। हस्तकलाकृतियों का निर्माण गांव में बसे लाखों परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। शिल्पकार अपने पूर्वजों द्वारा अपनाई कला से जुड़े होते हैं। वे अपनी कलाकृतियों की बिक्री से जीवन यापन करते हैं। एक कलाकृति बनाने में महीनों का समय लग जाता है, परंतु अत्यंत दुख की बात है कि फिर भी हमारे कला

0: कलाकारों को समय से उनकी कृतियों का यथोचित मूल्य नहीं मिल पाता है। शिल्पकार अपनी साधना को इंद्रधनुषी आयाम देने में दिन रात लगा रहता है, लेकिन बिचौलियों उद्योगपतियों द्वारा ग्राहक से कलाकृति की बिक्री का तो अधिक मूल्य ले लिया जाता है, परंतु कलाकार को उचित दाम नहीं मिलता, जिसका मुख्य कारण यह है कि कलाकार का अपनी वस्तु के वास्तविक ग्राहक से सीधा संपर्क नहीं हो पाता है। अतः आज शिल्पकार की अगली पीढ़ियां अपने पारिवारिक शिल्प को छोड़कर अन्य रोजगार ढूंढने के लिए मजबूर हो रही हैं। हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण ग्रामीण इलाकों में रह रही महिलाओं की आर्थिक रूप से मजबूती में भी विशेष महत्व रखता है। 70 लाख से अधिक पुरुष व महिलाएं कुटीर उद्योगों तथा हस्तशिल्प से अपनी आजीविका चला रहे हैं। इतने बड़े आंकड़ों के बावजूद भारत का हस्तकला उद्योग अत्यधिक बिखरा हुआ है, विशेषकर कच्चे माल की कमी, अपर्याप्त वित्त तथा मिल और कारखानों में निर्मित सामान से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण यह बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अतः आज विभिन्न स्तरों पर ठोस कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है, जैसे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति तथा घरेलू और विदेशी बाजारों में इन उत्पादों की बिक्री शामिल है। आज राष्ट्र पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान करना हमारे कारीगरों के गौरवपूर्ण योगदान का सम्मान है, जिन्होंने अपनी रचनाओं से संपूर्ण विश्व में भारत की पहचान बनाई है। वास्तव में कलाकार समाज का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो अपनी लगन व जुनून से कलाकृतियों को गढ़ता है। आज हस्तकलाओं को वर्तमान के आधुनिक बाजार से जोड़ना हस्तकला प्रदर्शनी, हाट, मेले आदि के द्वारा शिल्पकार का ग्राहकों से सीधा संपर्क कराना सकारात्मक कदम है। बहनों, हमें भी अपने घर, कार्यालय आदि की सजावट के लिए तथा उपहार देने के लिए इन कलाकृतियों को खरीदना चाहिए तथा कलाकारों को उनकी हस्तकलाओं के लिए सराहना कर सम्मान देना चाहिए, जिससे उन्हें अपनी कलाकृतियों की कद्र व प्रशंसा से गौरव का अनुभव हो, जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में हम योगदान कर सकेंगे। बहनों, हमें अपनी हस्तकलाओं पर सदैव गर्व रहेगा, जो हमारे देश की पहचान है।
1: बहनों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता छवि शिवहरे जी से, जिसका शीर्षक था हमारी हस्तकला हमारी पहचान। बहनों, कला का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता है। अब जब कला की बातें हो ही रही हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी कलाकारी अपने कपड़ों के साथ भी की जाए। पर कैसे, तो आइए जानते हैं अपने अगले सेगमेंट फैशन ब्यूटी में। बहनों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें कहीं शादी पार्टी में जाना होता है और हम अपनी अलमारी खोलते हैं, तो हमारे पास साड़ियों का तो अंबार होता है, परंतु मन नहीं करता उसको पहनने का। वजह बहुत सारी होती हैं, जैसे कभी बॉर्डर पुराना लगने लगता है, कभी डिज़ाइन आउट ऑफ फैशन हो जाता है, फिर हमें लगता है कि अब इन साड़ियों का हम क्या करेंगे, क्या होगा इन साड़ियों का। अरे बहनों, साड़ियाँ पुरानी हो सकती हैं, लेकिन हमारे आइडियाज़ तो नए होने चाहिए ना। अगर साड़ी अच्छी है और बॉर्डर पुराना लग रहा है, तो उसमें लेस, गोटा पट्टी या डिज़ाइनर बॉर्डर लगवा कर उसे नया बना सकते हैं। अगर कोई सिंपल साड़ी है, तो उसमें सीक्वेंस वर्क, मिरर वर्क, मोती, स्टोन या थ्रेड वर्क करा सकते हैं। सिंपल प्लेन कॉटन या सिल्क की साड़ी है, तो ब्लॉक प्रिंट, मधुबनी पेंटिंग या फ्लोरल डिज़ाइन बनवा सकते हैं। और तो और बहनों, हम दो साड़ियों को मिलवा कर बिल्कुल नई डिज़ाइनर साड़ी भी तैयार करवा सकते हैं। कई बार पुरानी साड़ी में नया ट्रेंडी ब्लाउज भी बनवा सकते हैं, जैसे कि जैकेट स्टाइल में बेल स्लीव्स, हाई नेक, इस तरीके के डिज़ाइन बनवा कर हम साड़ी को नया लुक दे सकते हैं। फिर देखिए किस प्रकार

तार हमारी पुरानी साड़ी भी ट्रेंडी लुक में नजर आएगी। बहनों, कहा जाता है कि भारत का हृदय गंगा के तट पर है। हिमालय की गोद से निकलकर गंगा कल कल छल छल करती हुई मैदानों में बहती हुई लाखों करोड़ों के जीवन में अमृत के समान मिठास घोलती है। बहनों, हम कार्यक्रम के अगले सेगमेंट मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत और बात करेंगे पवित्र और जीवनदायिनी गंगा के विषय में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत गंगा माँ को समर्पित करते हुए।

बहनों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के लिए राजा भागीरथ ने कठोर तप किया, इसीलिए भागीरथी नदी को गंगा की मूलधारा माना जाता है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब ये नदी देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिलती है, तब इसे गंगा कहा जाता है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर 2525 किलोमीटर का सफर तय करती हुई

0: बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अपने इस लंबे प्रवाह के दौरान 5 राज्यों से होकर भी निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे गंगा, गंगा की यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, दामोदर, कोसी आदि। बहनों, हम गंगा को पवित्र नदी मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जो भी व्यक्ति गंगा जल में डुबकी लगाकर स्नान करेगा, उसके दुख, पाप, रोग सब नष्ट हो जाएंगे। गंगा नदी लाखों लोगों के लिए वरदान है। लेकिन बहनों, दुख की बात यह है कि जिस गंगा नदी को हम माँ का दर्जा देते हैं, उसी को प्रदूषित करके उसके कलेजे को भी चीर देते हैं। बहनों, गंगा हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, तो गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखकर हम अपनी विरासत को सजो कर रखेंगे। आज से हम सब इसके लिए संकल्पित हैं। बहनों, कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, और जब तेज गर्मी पड़ती है तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता। लगता है कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए जिससे कुछ राहत मिले। तो बहनों, आज के सेगमेंट रेसिपी टाइम में हम ऐसे ही एक देशी स्वाद का खजाना लेकर आए हैं जो गर्मी में शरीर को ठंडा करने का कार्य करता है। बहनों, हम बात कर रहे हैं सत्तू की। बहनों, घर पर सत्तू बनाना बहुत ही आसान है। घर पर सत्तू बनाने के लिए आपको क्या लेना है? आपको लेने हैं 250 ग्राम काले चने, 2 चम्मच जौ और थोड़ा सा जीरा। अब सबसे पहले चने को अच्छे से साफ करने के बाद पोंछ ले। चने को और जौ को एक कढ़ाई में डालकर अच्छे से धीमी आंच पर भूने, और तब तक भूने जब तक वह सुनहरे व कुरकुरे ना हो जाएं। आखिर में जीरा भी डालें, थोड़ा सा और भूने। ठंडा होने पर मिक्सर में बारीक पीसकर एयर टाइट डिब्बे में स्टोर करें, और फिर जब भी मन करे चटपटा सत्तू ड्रिंक बनाएं। सत्तू ड्रिंक बनाने के लिए एक गिलास ठंडे पानी में 2 चम्मच सत्तू, काला नमक, भुना जीरा व नींबू डालकर अच्छे से मिलाइए व आनंद लीजिए ठंडे ठंडे सत्तू ड्रिंक का। बहनों, घर पर बने सत्तू का ड्रिंक में जो स्वाद भी होगा, सेहत भी होगी और हमारी देशी परंपरा भी होगी। तो बहनों, गर्मी में आप जब भी मन करे कुछ ठंडा पीने का तो यही ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो मीठा सत्तू यानी कि उसका शरबत भी बना सकते हैं। बहनों, आज हमने आपसे अलग अलग सेगमेंट्स के द्वारा विभिन्न विषयों पर बात की। खाने पीने की बात भी हो गई, तो चलिए बहनों, अब कुछ बात संगीत की भी हो जाए, क्योंकि आज की हमारी जो मेहमान हैं, जिनसे हमने बात की है, वह हैं ललिता करमचंदानी जी, जो कि संगीत से जुड़ी हैं, उसी से जुड़कर कार्य भी करती हैं और बच्चों को भी संगीत सिखाती हैं। तो आइए सुनवाते हैं आपको उनसे बातचीत के कुछ अंश।
1: ललिता जी, घर संसार में आपका स्वागत है।
2: अर्चना जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
1: ललिता जी, आपका म्यूजिक का सफर कैसे शुरू हुआ और आप संगीत से कैसे जुड़ी हुई हैं?
2: बचपन से ही मुझे संगीत से बहुत लगाव था। बचपन से ही मैं गाती आई हूँ, और उसके बाद मैंने शादी के काफी सालों बाद यानी आफ्टर 40 मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और धीरे धीरे स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू किया।
1: जैसा कि हमें पता चला कि आप बच्चों को संगीत की शिक्षा भी देती हैं, तो किस तरह का संगीत सिखाती हैं? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल या फिर बॉलीवुड?
2: बच्चों को हम शुरुआत से तो थोड़ा सेमी क्लासिकल से शुरुआत करते हैं। रियाज के साथ साथ उन्हें सुगम संगीत, भजन और भारतीय संस्कृति पे आधारित कुछ श्लोक वगैरह सिखाते हैं।
1: तो ललिता जी, आप बच्चों को सिखाने के अलावा भी कुछ करती हैं?
2: जी हाँ, मैं अपने कार्यक्रम यहाँ भारत और विदेशों में भी करती हूँ। हर तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अतिरिक्त मेरी एक संस्था भी है जो संगीत और समाज सेवा से जुड़ी है, गुनगुनाती जिंदगी।

0: जैसा कि नाम से ही आप विदित होता है, गुनगुनाती जिंदगी, यानी कि गुनगुनाते हुए हम समाज के कुछ दर्द बांट सके। जी,
1: जी, ये तो आप बहुत ही अच्छा और पुण्य का काम करती हैं। रेता जी, अभी आपने कहा आप देश विदेश में जाके कार्यक्रम करती हैं, शुरुआत आपने कब से की और उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। 2018 में मैंने शुरुआत की थी, तब हमारे सिर्फ ये ऐसी संस्थाएं और क्लब थे जो कि सिर्फ शौकिया ही करते हैं, और अभी 2-3 साल से मैं ये प्रोफेशनल प्रोग्राम्स कर रही हूँ।
1: ललिता जी, घर और करियर को बैलेंस करने में भी बहुत परेशानी होती है कभी कभी, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी परेशानियां आपने फेस की हैं?
0: देखिए अर्चना जी, ये तो हर महिला के साथ होता है, क्योंकि उसे घर भी संभालना होता है और अगर वो बाहर काम कर रही है कुछ भी, तो दोनों ही संभालने होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने शौक न पूरे करें या हम अपने कार्य न पूरे करें, तो वो एक सामंजस्य बैठा के चलती है, और हर महिला मुझे लगता है इसमें सक्षम होती है।
1: जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही ललिता जी, कि हर महिला में ये दृढ़ शक्ति भी होती है, पावर भी होती है कि वो अपने काम को, चाहे वो घर का काम हो या घर से बाहर निकल कर कुछ को हो, वो दोनों चीजों को बहुत अच्छा बैलेंस कर पाती हैं
0: जी
1: और बहुत अच्छे से कर पाती हैं। तो आखिरी में ललिता जी, मैं आपसे चाहूंगी कि अगर 4 लाइनें किसी चीज की आप गुनगुना दें तो।
0: अच्छा, बहुत ही महान गायिका आशा भोसले, जिनके बचपन से ही हम गीत गाते आए हैं और बड़े ही हम उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी उनके ही किसी गीत की 4 लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ।
1: जी बिल्कुल,
0: एक गजल है, सलोना सा सजन है और मैं हूँ।
1: जी।

0: वाह, बहुत खूब। ललिता जी, आशा जी अब हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज लाखों दिलों में आज भी धड़कती है। आवाज हमेशा आप जैसे लोगों के रूप में जीवंत रहेगी। आप आज हमसे जुड़े, हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहनों, अभी हमने सुना ललिता जी को, तो चलिए अब हम सुनते हैं आशा भोसले जी का ही एक गीत, यादों की बारात फिल्म से।

अभी बहनें सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे रानो मुखर्जी के गाए गीत। आइए सुनते हैं उनका ये पहला गीत, जिसके बोल हैं, ढूंढे है किसी को

रानू मुखर्जी के इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: when reports last came in. The Norby Chess 2026 kicks off in Oslo today with round one matches. The tournament will officially begin at 8:30 p.m. IST. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo, hosting its matches at the iconic Deichman Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा, कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने

0: कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल दो दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के

0: समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत

0: दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अकील अहमद का राग भैरवी में गायन।

श्रोता, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अकील अहमद खान का राग भैरवी में गायन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से किशोर कुमार और उषा खन्ना के सुरों में। गीत रचना इंदिवर की है और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

ज्वेल थीफ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा था मजरू ने और धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं नीला आकाश फिल्म से ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वर में। राजा मेहंदी अली खां के लिखे गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने।

श्रोता, इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो आइए आनंद लेते हैं इस गीत का जो लिया है हमने बागी फिल्म से। स्वर अभिजीत का है और गीत रचना समीर की और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

जान तेरे नाम। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना साधना सरगम और उदित नारायण के स्वर में। नवाब आरजू के गीत को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत।

प्रेम रोग इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर के स्वर में। गीत रचना संतोष आनंद की थी और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत आइए सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से कविता कृष्णामूर्ति के स्वर में। गीत रचना जावेद अख्तर की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अभी यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओ, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को है। अब हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा में सबसे पहले आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से समाचार।

यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय

0: करेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
1: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट वन ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन एट राष्ट्रपति भवन इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज एंड द प्राउड रिसिपियंट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
0: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे पांचवीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और ऊपर आ रही है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, इसी सभा में अब से कुछ देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति भावना पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान। नई पहल में जानकारी आपको दी जाएगी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना पर। इतिहास के पन्नों से जानेंगे फुटबॉल का इतिहास, और इसके अलावा आप सुनेंगे रितिका यादव से उनकी वार्ता, जिसका विषय होगा आत्ममुग्धता की मशीन बनता सोशल मीडिया। और चलते चलते में जानकारी गंगा दशहरा की। हमारे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम ग्राम्य लोक 6:00। श्रोता, इसमें चर्चा का विषय है आधुनिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अन्य चर्चा होगी धान की नई किस्में विषय पर। इसके अलावा सुनिएगा भेंट वार्ता, जिसका विषय रहेगा एनआरएचएम। डॉ उमेश चंद्र त्रिपाठी से बातचीत करेंगे श्री कृष्ण। इसके अलावा जानकारी दी जाएगी मंडी भाव की, मौसम की, और आनंद लीजिएगा लोकगीतों का।

मजदूर मंडल कार्यक्रम में 6:30 पर चर्चा होगी। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है श्रमिक। इसके अलावा आप जानेंगे घरेलू नुस्खे और आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में 7:10 पर आज हम आपको रास बिहारी बोस जयंती के उपलक्ष्य में सुना रहे हैं वार्ता, जिसका विषय है एक विलक्षण क्रांतिकारी रास बिहारी बोस। वार्ताकार हैं अनिल कुमार वर्मा। मेरी माटी मेरा देश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:31 पर। रात्रि 8 बजे फिल्मों से गजलें हम आपको सुनाएंगे, प्रोग्राम शामे गजल में।

9:30 पर दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। 10 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे विदुषी मुदगल का राग मारू बिहाग में गाया ख्याल।

श्रोताओ, अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति भावना पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या।

श्रोताओं, ये आवाजें थी सुरेश वाडेकर और साथियों की। गीत और संगीत था रविन्द्र जैन का। फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म गंगा की सौगंध से। लिखा है अंजान ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओ, रविंद्र साठे और साथियों के गाए फिल्म यशवंत के इस भजन के साथ ही कार्यक्रम सुरसंध्या अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 5:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। यह है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं आपका अपना चहेता और सबसे एनर्जेटिक कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त स्वाति यादव और आज की इस बेहद खास महफिल में आगरा और इसके आसपास के सभी युवा साथियों का दिल से स्वागत करती हूं। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपके लिए है एक सवाल कि आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब और किसने की, जिसका जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक थोड़ा सोचिए, समझिए और विचारिए आखिर क्या है इसका जवाब। लेकिन साथियों, अभी समय हो चला है आज के हमारे युवा विमर्श यानी कि आज के स्पेशल टॉपिक का। दोस्तों, जब हम सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो आसमान की तरफ देखकर अक्सर सोचते हैं कि आज धूप तेज होगी या बारिश आएगी, छाता साथ रखें या ना रखें। खासकर हमारे आगरा और आसपास के किसान भाइयों और कॉलेज जाने वाले युवाओं के लिए मौसम का हाल जानना बेहद ज़रूरी होता है। पहले हम न्यूज़ या अखबारों में मौसम का अनुमान देखते थे जो कभी सही होता था और कभी कभी थोड़ा आगे पीछे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जिस दौर में जी रही है वहाँ एक नई क्रांति हो चुकी है, वो है AI आधारित मौसम पूर्वानुमान। जी हाँ साथियों, अब मौसम का हाल बताने का काम सिर्फ पुराने सैटेलाइट्स के भरोसे नहीं है, बल्कि अब मैदान में उतर चुका है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने हाल ही में सुना होगा कि मौसम विभाग अब ऐसे सुपर मॉडल्स और AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो मिनटों में बता देते हैं कि अगले कुछ घंटों में आपके शहर के किस हिस्से में बारिश होने वाली है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपके फ़ोन का स्मार्ट असिस्टेंट आपकी पसंद नापसंद को सीख जाता है, ठीक वैसे ही ये AI सिस्टम पिछले कई सालों के मौसम के डेटा, हवा की रफ्तार और बादलों की हलचल की बारीकी से एनालिसिस करते हैं। नतीजा सटीक पूर्वानुमान, यानी अब अचानक आई आंधी या बिन मौसम बरसात से होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं संगीत और सुरों की दुनिया में और सुनते हैं एक गीत।

0: दोस्तों, अभी अभी हमने बात की कि कैसे एआई की मदद से हमें मौसम की बिल्कुल सटीक जानकारी मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, मौसम और तकनीक की बातें तो ठीक हैं, पर इसका हमारे खेतों और हमारी जेब से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत गहरा है दोस्तों। जब मौसम का सही अनुमान होगा, तभी तो हमारे किसान भाई ये तय कर पाएंगे कि खेत में खाद या पोषक तत्व कब और कितनी मात्रा में देने हैं। और जब बात खाद और पोषक तत्वों की आती है, तो भारत सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना का नाम सबसे ऊपर आता है, NBS, यानी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना। सरल शब्दों में कहें तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना यानी NBS सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही एक बेहद समझदारी भरी स्कीम है, जिसे साल 2010 में शुरू किया गया था। इस योजना से पहले सरकार केवल यूरिया जैसी बोरियों पर फिक्स सब्सिडी देती थी, जिससे खेतों में सिर्फ एक ही तरह की खाद का अंधाधुंध इस्तेमाल होने लगा और हमारी मिट्टी की सेहत खराब होने लगी। लेकिन NBS योजना ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया। इसके तहत सरकार खाद की बोरी पर नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर की मात्रा प्रति किलोग्राम के आधार पर सब्सिडी देती है। इससे होता यह है कि खाद बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलता है कि वे मिट्टी की जरूरत के हिसाब से अलग अलग पोषक तत्वों को मिलाकर कस्टमाइज्ड और संतुलित खाद जैसे DAP और NPK तैयार करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह योजना मिट्टी को सही पोषण और किसान को सही दाम देने की एक बेहतरीन मिसाल है। चलिए, इसी के साथ अब सुनते हैं वार्ता आत्ममुग्धता की मशीन बनता सोशल मीडिया वार्ताकार रितिका यादव से।
1: सोशल मीडिया वर्तमान दुनिया का एक ऐसा माध्यम जिसने समस्त दुनिया को करीब ला दिया है, विचारों को तेजी से फैलने का मौका दिया है,

और हर इंसान को एक मंच प्रदान किया है। लेकिन इस सब के साथ ही साथ ये मंच अब धीरे धीरे एक आईना बनता जा रहा है, जिसमें हम बार बार अपनी ही छवि को निहारते रहते हैं, लाइक्स और फॉलोअर्स के जरिए खुद को आंकते हैं। वैसे तो सोशल मीडिया आज के युवाओं की दुनिया का एक अविभाज्य हिस्सा बन चुका है। सुबह की शुरुआत इंस्टाग्राम पर गुड मॉर्निंग स्टोरी से होती है और दिन का अंत होता है ट्विटर पर गुड नाइट ट्वीट से। लेकिन क्या कभी आपने रुक कर सोचा है कि इस आभासी दुनिया में हम किस ओर बढ़ रहे हैं? कहीं हम युवा आत्ममुग्धता की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? यदि आत्ममुग्धता की बात की जाए तो आत्ममुग्धता का अर्थ है खुद से अत्यधिक प्यार करना और अपने बारे में अति प्रशंसा करना। ये अक्सर दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करने और उनकी परवाह ना करने के साथ जुड़ा होता है, यानी स्वयं की सुंदरता, योग्यता या उपलब्धियों को अत्यधिक महत्व देना। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी छवि, अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा प्रिय होती है। मनोविज्ञान में हम इसे नार्सिसिज्म कहते हैं। इसकी अति स्वयं व्यक्ति और परिवार से लेकर समाज तक की तबाही का कारण बन सकती है। दूसरे विश्व युद्ध के लिए आज तक हिटलर की आत्ममुग्धता को ही मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज ये प्रवृत्ति जब सोशल मीडिया के जरिए लगातार बढ़ रही है तो वह केवल एक आदत नहीं रह जाती, बल्कि हमारी जीवन शैली बनती जा रही है। हर पोस्ट में खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाना, फिल्टर लगाकर परफेक्ट दिखाना, हर प्रतिक्रिया को गंभीरता से लेना, ये सब आत्ममुग्धता के ही तो सूचक हैं। आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां मान्यता मुद्रा है, आत्म प्रचार अस्तित्व है और सावधानी से चुने गए व्यक्तित्व वास्तविकता को पीछे छोड़ चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं। आत्मविश्वास और प्रसिद्धि को बढ़ाते हैं, जबकि साथ ही नैतिक मूल्यों और आत्मसम्मान को खत्म करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए बताती हूँ। आज कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली बन सकता है। कोई कौशल नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस एक कैमरा और दर्शक। ये प्रभावशाली संस्कृति सामाजिक स्थिति को महामंडित करती है, जिससे प्रशंसा, भव्यता और अधिकार से ग्रस्त समाज का निर्माण होता है। संक्षेप में कहें तो ये आत्मकामी प्रवृत्तियों के लिए प्रजनन भूमि है। आज सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बना हुआ है जहाँ हर व्यक्ति अपना ब्रांड बना रहा है। प्रोफाइल फोटो, बायो, पोस्ट, स्टोरीज, रील्स, ये सब जैसे व्यक्ति की पहचान बन गए हैं। लेकिन ये पहचान असल है या कृत्रिम, देखते हैं। आज हम जिन सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं वो भी इसी का एक उदाहरण है, जहाँ दुनिया के सामने वो खुद को सबसे अच्छी जिंदगी का हिस्सा बताते हैं, परंतु असल जिंदगी उतनी ही तनावपूर्ण और अस्त व्यस्त होती है। हम लगातार हाईलाइट रीलों से घिरे हुए हैं, आलीशान जीवन शैली, बेहतरीन रिश्ते और अतिरंजित सफलता की कहानियाँ। ये सब युवाओं में कभी न खत्म होने वाली तुलना, ईर्ष्या, असुरक्षा और श्रेष्ठता की अस्वस्थ जरूरत को बढ़ावा देती हैं। ये इस बात का संकेत है कि सोशल मीडिया अब एक आईना नहीं बल्कि एक प्रदर्शनी बन गया है, जिसमें हम खुद को दिखाने के लिए नहीं सजाने के लिए जीने लगे हैं। एक शोध के अनुसार हर 4 में से एक युवा अपने आत्म मूल्य का आंकलन अपने सोशल मीडिया एंगेजमेंट से करता है। वह डिजिटल वैलिडेशन को बोझ लेकर जीने लगा है। आज के युवा अपने असली रूप से दूर भागते नजर आते हैं। वे अपनी वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि सोशल मीडिया पर बनी छवि को ही अपना सच्चा रूप मानने लगे हैं। रियल लाइफ में समस्या हो सकती है, लेकिन रियल लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, पर यह सोच बहुत खतरनाक है। आज का युवा दिन भर स्क्रीन पर है, लेकिन भावनात्मक रूप से बिल्कुल अकेला। वे दूसरों की तारीफ करता है, अपनी तारीफ सुनना चाहता है, लेकिन आत्मविश्लेषण से दूर हो गया है। वे जानता है कि लाइक्स फर्जी भी हो सकते हैं, फिर भी वह उनकी संख्या से संतुष्टि ढूंढता है। और जब युवा अपनी छवि बनाए रखने में असफल होते हैं तो आत्मग्लानि और अवसाद गहराता है। डिप्रेशन, अकेलापन और आत्मसंदेह जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक संबंधों की हानि भी हो रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर हम हजारों मित्र बनाते हैं, वहीं असल जिंदगी में आत्मीय संबंध कमजोर होते जा रहे हैं। लोग एक दूसरे से मिलकर बात करने की बजाय स्क्रीन पर कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, समस्या गंभीर है, लेकिन समस्या जितनी बड़ी है समाधान उतना ही सरल है, वो है संतुलन। सोशल मीडिया का उपयोग तो करें, लेकिन उसके गिरफ्त में ना आएं। आज हमें जरूरत है आत्ममुग्धता से आत्मबोध की ओर बढ़ने की, जहां सोशल मीडिया साधन हो, साध्य नहीं, जहां स्क्रीन के पीछे का चेहरा असली हो, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए बना नकाब। सोशल मीडिया को आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना अच्छा है, लेकिन जब ये आत्ममुग्धता की मशीन बन जाए तो ये ना केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य बल्कि समाज की सामूहिक चेतना के लिए भी हानिकारक हो सकता है। प्रिय साथ

0: साथी हूँ, दुनिया आपको वैसे ही स्वीकार करेगी जैसे आप हैं, बशर्ते आप खुद को स्वीकारें, अपनी आवाज, अपनी पहचान और अपने स्वाभिमान को बनाए रखें, क्योंकि वे लाइक या रीट्वीट नहीं, जीवन भर की पूंजी होती है।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी वार्ता आत्ममुग्धता की मशीन बनता सोशल मीडिया, वार्ताकार रितिका यादव से। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे खेतों की, मिट्टी की और देश के अन्नदाताओं की। वैसे दोस्तों, मिट्टी की बात चली है तो मुझे याद आया कि इसी मिट्टी और हरे भरे मैदानों का एक और चीज़ से बहुत गहरा नाता है, और वो है खेल। खेतों में पसीना बहाने वाला हमारा युवा जब शाम को खेल के मैदान में उतरता है तो उसकी ऊर्जा देखने लायक होती है। और जब बात दुनिया के सबसे लोकप्रिय, सबसे रोमांचक और सबसे ज़्यादा दीवानगी वाले खेल की हो तो ज़ुबान पर एक ही नाम आता है, फुटबॉल। आज के इस खास पड़ाव में आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे

सहायक होती है। और जब बात दुनिया के सबसे लोकप्रिय, सबसे रोमांचक और सबसे ज़्यादा दीवानगी वाले खेल की हो, तो ज़ुबान पर एक ही नाम आता है, फुटबॉल। आज के इस खास पड़ाव में आइए, समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं इतिहास के पन्नों में, जहां आज हम खंगोलेंगे फुटबॉल की इस जादुई यात्रा का सफरनामा। साथियों, आज भले ही हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या हमारे अपने सुनील छेत्री के गोल दागने पर टीवी के सामने चीख तो पड़ते हैं, लेकिन इस खेल का इतिहास सदियों पुराना है और बेहद दिलचस्प भी है। आमतौर पर माना जाता है कि आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, लेकिन इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि ईसा पूर्व दूसरी और तीसरी शताब्दी में चीन के हान राजवंश के दौरान कुजू नाम का एक खेल खेला जाता था, जिसमें चमड़े की गेंद को एक नेट में किक मारना होता था और इसे ही फुटबॉल का सबसे पहला रूप माना गया है। इसके बाद रोम और ग्रीस में भी इससे मिलते जुलते खेल खेले गए, लेकिन फुटबॉल को अनुशासित और व्यवस्थित रूप मिला 19वीं सदी के मध्य में, जब साल 1863 में इंग्लैंड में द फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ और पहली बार इस खेल के आधिकारिक नियम बनाए गए, जैसे कि हाथ से गेंद को ना छूना। धीरे धीरे यह दीवानगी पूरी दुनिया में फैली और इस खेल का एक वैश्विक छत देने के लिए 21 मई 1904 को फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसने साल 1930 में उरुग्वे में पहला आधिकारिक फीफा वर्ल्ड कप आयोजित कराया। और भारत में भी इसका इतिहास कम गौरवशाली नहीं है। साल 1911 में मोहन बगान की टीम ने ब्रिटिश ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हराकर आईएएफ शील्ड जीती थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी युवाओं के भीतर राष्ट्रवाद का एक नया जोश फूंक दिया था। तो दोस्तों, ये था हमारे फुटबॉल का इतिहास। आइए चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और गीत।

दोस्तों, चलते चलते एक बेहद महत्वपूर्ण बात, नदी संरक्षण पर। नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की जीवन रेखा है। आज दशहरा पर हमें केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि एक जिम्मेदार युवा होने के नाते यह वादा करना है कि हम अपने आगरा की जीवनदायिनी यमुना जी और देश की सभी नदियों में प्लास्टिक, कूड़ा कचरा या पूजा सामग्री विसर्जित करके उन्हें मैला नहीं करेंगे। जब नदियां निर्मल रहेंगी, तभी हमारा कल सुरक्षित रहेगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

दोस्तों, अब वक्त है अपने सवाल का जवाब देने का, जो हमने आपसे पूछा था कार्यक्रम की शुरुआत में। आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रस बिहारी बोस ने 1942 में की थी। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, जागरूक बनिए और सुनते रहिए आकाशवाणी आगरा। नमस्कार।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं 6 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम ग्राम्यलोक।

से बहुत सी बातें करनी है और आपके साथ हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो उससे आप लोग ये बताइए कैसे हो आप सभी, घर परिवार में सब लोग ठीक ठाक राजी खुशी तो हैं? दोस्तों पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि गर्मी चरम पर है, सूर्य देवता के तेवर इतने तीखे हैं कि दोपहर में ऐसा लगता है कि आसमान से आग बरस रही हो। भाई बहनों इन दिनों एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि चाहे खेती किसानी के काम हो या फिर कोई दूसरे जरूरी काम, उन्हें सुबह शाम में निपटा लें। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर जाने से बचें। अगर जाना जरूरी है तो सिर को अंगूठे से ढक कर रखें, आंखों पर काला चश्मा लगा कर रखें और हो सके तो साथ में छाता और पानी की बोतल लेकर जरूर चलें। गर्मी के दिनों में अपने खान पान का भी हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। हल्का भोजन करें, हरी सब्जियां और सलाद ज्यादा से ज्यादा खाएं, तला भुना खाने से परहेज करें, नींबू पानी जूस छाछ लेते रहें, पानी खूब पिएं। मित्रों कहने का सीधा सीधा मतलब है कि गर्मी और लू से बचते रहिए। साथियों अपनी खेती किसानी की बात करें तो जायत में आपकी मूंग की कटाई चल रही होगी या फिर 10-15 दिन में कट जाएंगी। हमारे किसान भाई धान की पौध की तैयारी में हफ्ते 10 दिन में लग ही जाएंगे या कर ही देंगे और कुछ किसान साथियों ने तैयारी शुरू भी कर दी है। भाई बहनों अपने इस कार्यक्रम में हमें जब भी मौका मिलता है और बार बार हम लोग अपने किसान साथियों से एक ही बात कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम लोग अब तक जिस तरीके से खेती करते चले आ रहे थे उन परंपरागत तरीकों को छोड़कर खेती के लिए आधुनिक तरीकों और तकनीकों को अपनाना अब जरूरी हो गया है, तभी हम आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। साथियों वैसे तो आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, घटती जोत बढ़ती लागत लगातार कम हो रही मिट्टी की उर्वरता से घटती पैदावार ने हम किसानों की कमर तोड़ दी है और ऐसे समय में अब भी हम परंपरागत खेती का राग अलापते रहे तो फिर हमें अपनी तरक्की अपनी आर्थिक उन्नति के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। आज हमारे पास खेती की तमाम उन्नत तकनीक हैं, उनका सहारा लेकर नवाचार करते हुए हमें परंपरागत तरीके से खेती करने वाले किसानों की भीड़ से निकलकर अपनी एक नई पहचान बनानी होगी। साथियों जायद में हमने अपने खेतों में सब्जियों की खेती की है और ज्यादातर किसान भाइयों ने परंपरागत तरीके से सब्जी लगाई होगी हमें बताया, जबकि सब्जी की खेती के लिए आज मल्चिंग विधि बहुत ही कारगर साबित हो रही है। कम लागत कम मेहनत कम पानी से हम अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों की बेहतर पैदावार ले सकते हैं। किसानों की घटती जोत कम होती खेती का रकबा किसानों के लिए एक बड़ी चिंता है क्योंकि इसका कोई समाधान नहीं है, खेती योग्य जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जाएगी। मित्रों कम खेती में ज्यादा पैदावार लेने के लिए हमारी मदद केवल तकनीक करेगी, इसके लिए हमारे पास बहुफसली खेती मल्टी लेयर फार्मिंग विधि है। अगर हमारे पास शुरुआत में कुछ बजट है तो सरकारी अनुदान लेकर हम पॉली हाउस खेती कर सकते हैं, अपने लिए रोजगार का एक स्थायी साधन बना सकते हैं। मित्रों खेती में आज लागत का एक बड़ा हिस्सा रासायनिक खादों पर खर्च होता है हम सब जानते हैं, उस खर्च को कम करने के लिए या ये कहें कि न के बराबर करने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ समय पर मिट्टी की जांच कराकर अपनी मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। मित्रों हमारी सरकार भी हमारे अन्नदाता को प्रोत्साहित कर रही है और समय की मांग भी है कि अब हम लोग रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती और शून्य बजट खेती की ओर अपना रुख करें ताकि मिट्टी स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा हो सके। किसान भाई बहनों खेती किसानी के साथ साथ कुछ रकबे में अगर हम बागवानी करते हैं तो एक समय बाद ये हमें लगातार आमदनी देती है, हमारे लिए आमदनी का एक नया जरिया बन जाता है और खेती के साथ किसी किसान की आमदनी जो खेती के अलावा हो पशुपालन एक बेहतर विकल्प है। साथियों आज के समय में हमारे पास आधुनिक तकनीक के कृषि यंत्र हैं जिनमें हमें खेती के कामों में कोई समस्या नहीं होती है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। खेती किसानी की उन्नत तकनीक के तरीकों में खेती किसानी की किसी भी समस्या की जानकारी के लिए हमारे लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी के लिए उनके बारे में जानने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों से हम जुड़ सकते हैं, किसान कॉल सेंटर का हम सहारा ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है साथियों अगर हम आधुनिक तरीकों और तकनीकों से अपनी खेती करते हैं तो हमारा अन्नदाता तो आर्थिक रूप से संपन्न होगा ही, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

किसान भाइयों और बहनों, राम राम। कार्यक्रम ग्रामीणों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और हमसे सुनने के लिए, हमें जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। साथियों, आज के कार्यक्रम में

तो साथियों, हमारा तो आपसे सभी से यही कहना है कि भाइयों बहनों, यही कहना है कि समय के साथ चलिए परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तरीकों से अपनी खेती को करिए और उन्नतशील किसान बनिए। तो साथियों, चलिए इसी खुशी में आनंद लेते हैं इस प्यारे से लोकगीत का। साथियों, गर्मी का कहर अपने चरम पर है, तापमान 43-44 पे है, ऐसे में गर्मी से परेशान होकर ये अपने पिया से क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं।

0: किसान साथियों, हमने गीत संगीत का आनंद तो ले ही लिया, खेती किसानी की बातें भी हो गई। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के पहले सुख यानी कि सेहत की। साथियों, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, खासकर महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका नाम है NRHM यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। साथियों, NRHM क्या है, इस मिशन के तहत हम कैसे स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं, इन तमाम बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश चंद त्रिपाठी, आपसे बातचीत कर रहे हैं श्री कृष्ण।
1: डॉक्टर साहब, ये NRHM जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना क्या है और इससे किन लोगों को लाभ मिल रहा है?
2: ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो योजना है 2005 से शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा, हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये तभी से लागू की गई, परंतु इसका सही क्रियान्वयन 2007 से हो पाया। इसके अंतर्गत जो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता है उनको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की जो जो योजनाएं हैं उसमें मुख्य जैसे कि गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराना वो इसमें शामिल है। और मुख्य उद्देश्य तो इसके दो हैं, नंबर एक मातृ मृत्यु दर को कम करना, दूसरा शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो उससे संबंधित जितनी भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के तुरंत पश्चात सारी जांचें कराना और उनको अस्पताल में लेके आना, उनकी डिलीवरी कराना, उसके बाद में डिलीवरी के उपरांत भी उनके फॉलोअप करना, ये सब उसमें आती है, और जो बच्चा है उसका भी देखरेख करना, इन सब कारकों जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हर 1,000 से 1,500 की आबादी पर आशा नाम की कार्यकर्ती, आशा जिसको बोलते हैं, वैसे उसका पूरा नाम तो इंग्लिश में एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, और वो हर 1,000 से 1,500 की आबादी में एक कार्य कर रही है, और वही ये सब कार्य में एज ए मीडिएटर हमारे सारे प्रोग्रामों में सहयोग करती है।
1: यानी जो आपकी योजनाएं, जो सुविधाएं, उनको गांव के लोगों तक तो पहुंचाने के लिए आशा का एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका है। अच्छा, आशा फील्ड में जाके किस तरह काम करती, क्या करती है वास्तव में?
2: आशा जो 1,000 और 1,500 के बीच की आबादी में उसी गांव की महिला है, और वो उस गांव की बहू या कोई लड़की भी हो सकती है, और वो वहां पर जो उसकी क्षेत्र आबादी जो उसको एलोटेड है उस क्षेत्र में वो जाकर घर की सर्वे भी करती है, तो गर्भवती महिलाओं को छांट कर और उनको जो भी उनसे उनके लिए जांचे हैं और उनको नियमित टीकाकरण का है, जैसे टीटी के इंजेक्शन लगवाना है, 100 गोलियां आयरन की देना है ना, ये ENC प्रसवपूर्व जांच होती, ब्लड प्रेशर वगैरह जांच कराना, ये सब करवाती है, और उसके बाद में वो उनको संस्थागत प्रसव के लिए हमारी CSC PSC पर लेके आती है। इसके लिए 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। 108 डायल करने के बाद में गाड़ी पहुंचती है, उसमें आशा और वो गर्भवती महिला उसके जो है दोनों बैठ के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं, और वहां पर प्रसव कराने के उपरांत वो 48 घंटे तक रहना जरूरी है, और उसके बाद में वो 102 एम्बुलेंस सेवा जो हमारे शासन द्वारा चलाई जा रही है उससे उनको घर तक पहुंचाया जाता है।
1: अच्छा, इसके लिए क्या उन्हें कोई प्रोत्साहन के लिए भी कुछ व्यवस्था है?
2: इसके लिए 1 जुलाई से पहले तक 30 जून तक आशा को एक प्रसव पर 600 रूपये दिए जाते थे, 250 प्रबंध का है, 200 रूपये उसका मानदेय था और 150 खाने का था। अब उसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है कि 300-300 का ब्रेकअप कर दिया गया। 300 रूपये तो उसको प्रसव पूर्व देखभाल के लिए है, जिसमें कि उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, जो कार्ड बनता है गर्भवती महिला का आपने देखा होगा है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराना है, साथ में TT के 2 इंजेक्शन लगना है, और उसके उपरांत 100 गोलियां आयरन की उसको उपलब्ध कराना है, और 3 जांचें कराना है। इन सब कार्य के लिए उसको 300 रूपये दिए जाएंगे, और 300 रूपये संस्थागत प्रसव कराने के लिए, वो साथ में अगर आएगी उस महिला के साथ में तब 300 रूपये दिए जाएंगे। इसमें ये है कि वो जब रजिस्ट्रेशन कराएगी तो एक हमारे यहाँ नंबर अलॉट होता है जिसको बोलते हैं MCTS नंबर, तो वो नंबर अलॉट होगा तभी उसको 300 रूपये दे।
1: जो ग्रामीण महिलाएं अपना प्रसव कराने के लिए अस्पताल में स्वतः आती हैं बिना आशा की मदद के, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए या कुछ ऐसा भी कोई प्रावधान है उनके लिए, कोई भोजन या ऐसी कोई व्यवस्था?
2: हाँ जी, हाँ जी, उसमें एक हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, उसके अंतर्गत जो मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो ड्रॉपबैक फैसिलिटी है, जो गर्भवती महिला हमारे अस्पताल में डिलीवरी कराने आ गई उसको 102 एम्बुलेंस सेवा द्वारा घर पर छोड़ा जाता है, वो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जिसको शॉर्ट में JSSK बोलते हैं, उसके अंतर्गत है। उसके अंतर्गत जो गर्भवती महिला है वो 3 दिन तक रुकेगी वहाँ पर, और उसमें उसको खाना और नाश्ता जो भी है फ्री दिया जाएगा। और हमारे जितनी CSC PSC है वहाँ पर सभी जगह पर ये सेवाएं चल रही है, नियमित रूप से चल रही है।
1: अगर कोई ग्रामीण महिला जिसे उसने गर्भ धारण किया है, अगर वो आपके किसी स्वास्थ्य केंद्र पर आती है, स्वतः आती है, तो उसको क्या दवाएं या गोलियां इनकी देने की व्यवस्था है?
2: जी जी जी, वो पूरी व्यवस्था तो पूरी है। यदि कोई आशा नहीं आती है तो भी गर्भवती महिला को सारी सुविधाएं जो आशा के साथ दी जाती हैं वो भी दे होंगी।
1: अच्छा, इस योजना के लागू होने से आपका क्या अनुभव कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर शिशु मृत्यु दर या माताओं की मृत्यु दर में कुछ कमी आई है, किस तरह का आपको फर्क दिखाई पड़ रहा है?
2: हाँ जी, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों में कमी आई है। और जो एक समय 450 से भी ज्यादा हुआ करता था वो इस समय घट के काफी कम 350 के आसपास आ गया है मातृ मृत्यु दर। और जो शिशु मृत्यु दर 80 हुआ करता था वो इस समय करीब 52-53 के लगभग हमारे प्रदेश में है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले सालों में इसमें जो है मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी।
1: ये भी देखने वाला कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं या इसके महत्व को नहीं समझ रही हैं, वो चाहती हैं कि घर में ही प्रसव हो, तो इसके लिए कैसे उन्हें मोटिवेट करें कि वो अस्पताल तक आए, या कोई प्रशिक्षित दाई, ऐसे कोई व्यवस्था है?
2: नहीं, अभी तो जो दाई की व्यवस्था थी वो अभी शासन के द्वारा बंद है। उसके लिए आशा को ही हम लोग और मोटिवेट कर रहे हैं और स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसको कि वो उसके जो है उन गर्भवती महिलाएं जो भी रजिस्टर्ड हों उनको तुरंत प्रसव के दौरान अस्पताल में लाया जाए।
1: अच्छा, इस योजना के लिए ग्रामीण महिलाओं में और जो वहाँ के रहने वाले उनके प्रति कैसा आपको उत्साह दिखाई पड़ रहा है, क्या लगता है कि इसमें और क्या कैसे और अच्छे रिजल्ट्स आए?
2: ग्रामीण में इस योजना जो जननी सुरक्षा योजना है इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और हर वर्ष उसमें बढ़ोतरी हो रही है, परंतु अभी अपेक्षाकृत नहीं है। और उम्मीद यही की जा रही है कि आगे आने वाले सालों में जननी सुरक्षा योजना में बढ़ोतरी होगी और संस्थागत प्रसव बढ़ेंगे, जिससे कि जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा किया जाएगा।
1: वे कौन से कारण हैं जिनके चलते लोग अभी भी अस्पताल में आने में झिझक रहे हैं, वो अपना प्रसव कराने के लिए अस्पताल में नहीं आते हैं, वो कौन से कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से?
2: पुरानी रूढ़िवादी जो बातें हैं उसी कारण से अस्पताल में प्रसव कराने नहीं आते हैं लोग। और वैसे अब गाँव में काफी प्रचार किया जागरूकता आ चुकी है और 108 एम्बुलेंस जो समाजवादी 108 एम्बुलेंस सेवा है उसके बाद में तो शायद कोई भी अब कोई अकस्मात ही एकदम हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज सभी अस्पताल में आने लगे हैं।
1: 108 एम्बुलेंस सेवा का कैसे फायदा उठाएं इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं, क्या करना होगा उन्हें?
2: अपने मोबाइल से 108 डायल करिए और वो आपको डायल करने के उपरांत वो आपसे पता और पूछेंगे कहाँ पे किस जिले से बोल रहे हैं आप, किस तहसील से बोल रहे हैं, कौन सा गांव है आपका। उसके बाद में वहाँ इसकी चूंकि कंट्रोल ऑफिस लखनऊ में है और वो फिर उसके बाद में जो है अपने जो नियरेस्ट 108 एम्बुलेंस सेवा जहाँ पे है उसको वो फोन करते हैं। और अभी तक जितनी जगह मेरे द्वारा देखा गया है कि 10 से लेके 15-20 मिनट के अंदर वो लोग पहुंच जाते हैं।
1: क्या इसके लिए कोई शुल्क वगैरह देना है?
2: ना, कोई शुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं देना।
1: डॉक्टर साहब, और इस योजना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो तमाम ग्रामीण भाई बहन आपको सुन रहे हैं, कैसे उनकी कैसे फायदा उठा सकते हैं, आपके लिए क्या मैसेज होगा?
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी और अच्छी योजना है जिसमें आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना, जिसका नाम अब बदलकर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम रख कर दिया गया है। उसके अंतर्गत हमारे 2 साल से और 19 साल तक के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है। और हमारी पिछले फरवरी 2013 से ये योजना हमारी लागू हो चुकी है और उसको और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और हर ब्लॉक में 2 टीमें हैं जिसमें आयुष और MBBS डॉक्टर्स लगे हुए हैं और वो उनके साथ में 2-2 पैरामेडिकल स्टाफ है, जैसे स्टाफ नर्स है और ऑप्टोमेटिस्ट है। तो वो गांव में जो जितने प्राइमरी स्कूल हैं सरकारी और एडिड स्कूल और आंगनवाड़ी स्कूलों में वो टीमें हमारी जा रही हैं और जाके उन बच्चों को एग्जामिन कर रही हैं, यदि कोई कमी है और तो उनको समुचित ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या फिर उनको रेफर करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। साथ में जो स्कूल के बच्चे हैं उनको आयरन की गोलियां और एल्बेंडाजोल जो कीड़े मारने की गोली है वो तुरंत अपने सामने खिलवाई जा रही है। और आयरन की गोलियां स्कूल में टीचर्स को जो नोडल टीचर है जिसको की ट्रेनिंग दे चुके हैं, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उनको उनके पास रखी जा रही है और वो उनको बच्चों को नियमित रूप से हर सप्ताह में दो बार खिलाते हैं। और इस वर्ष आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं उनके लिए आयरन सिरप का सरकार ने प्रावधान किया है, के लिए हम लोग खरीदने के लिए क्रिया चल रही है और शीघ्र ही उसको खरीद लिया जाएगा।
1: ग्रामीण भाई बहनों से कुछ कहना चाहेंगे आप?
2: मैं सभी अपने ग्रामीण भाई बहनों से सभी से कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग भी सब ग्रामीण

0: भारत से ही जुड़े हुए हैं, वही हमारा बैकग्राउंड है। मैं ये चाहूंगा कि सबसे ज्यादा यदि ध्यान रखना है तो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम कोई भी काम अच्छी ढंग से कर सकते हैं। पहला सुख जो निर्मल का आया तो ये है कि पहला सुख यही है कि हम लोग स्वस्थ रहें, और जितनी भी हमारी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य से संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ उठाएं, उसमें सहयोग भी। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथी, अभी हमने डॉक्टर उमेश चंद त्रिपाठी से जाना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के बारे में आपसे बातचीत कर रहे थे श्री कृष्ण। किसान साथियों, सेहत की बातों के बाद एक बार फिर लौटते हैं खेती किसानी की बातों पर। दोस्तों, हफ्ते 10 दिन में हम लोग खरीफ में धान की फसल की पौध बोने की तैयारी में लग जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि फसल कोई भी हो, अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीजों का होना बहुत जरूरी है। सही, धान की उन्नत पैदावार के लिए अच्छी किस्मों की बात करें तो इनमें कम समय में पकने वाली किस्में हैं PR 126, पूसा बासमती 1509, स्वर्ण शुष्क। अच्छी पैदावार वाली हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो इनमें पाइनियर 28P67, श्रीराम सुपर 505, कावेरी 468। प्रीमियम और बासमती किस्मों की बात करें तो पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1692 है। किसान भाइयों, धान की उन्नत किस्मों को जानने के बाद आइए जानते हैं मौसम के हाल। आज के तापमान की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस। कल का तापमान की बात करें तो कल का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। भाइयों बहनों, आपको पता ही है कि इन दिनों हमारे ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, और 84 कोस की परिक्रमा देने की ये अपने सैया से क्या कह रही हैं, चलिए सुनते हैं।

किसान भाई और बहनों, इस लोकगीत के साथ ही आज का कार्यक्रम ग्राम लोक यहीं पर संपन्न करने की अपने रेडियो दोस्त अनिरुद्ध को दीजिए अनुमति। आप सभी को हमारी राम राम।

ये था ग्रामीण अंचल के श्रोताओं के लिए उनका कार्यक्रम ग्राम्य लोक। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल में। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी मनीषा अरोरा, जो कार्यक्रम को खास बनाने आई हूँ, इसलिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिएगा। आज आपकी जानकारी के लिए बार बार तड़का तो लगेगा ही, तो उस तड़के को एंजॉय करिए हमारे साथ। और बताइए, कैसे हैं आप सब? उम्मीद ये करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और इस गर्म मौसम में भी अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि भाई मई की जो तपती दोपहरें हैं वो तो चल ही रही हैं। ना तो सुबह राहत मिल रही है और ना ही किसी को रात को। भाई गर्म हवाएं और तेज धूप लोगों को परेशान करने लगती हैं, तो ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल लगता है ना साथियों? लेकिन जब हम अपने आसपास नजर घुमाते हैं ना, तो कोई सड़क पर काम कर रहा होता है, तो कोई इमारत बना रहा होता है, कोई भाई खेतों में मेहनत कर रहा होता है, तो कोई फैक्ट्री में मशीनों के बीच दिन रात जुटा हुआ होता है। इतनी गर्मी और मुश्किलों के बावजूद हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं, वो अपने काम में लगे ही रहते हैं, ताकि हमारा, जी हाँ हमारा जीवन आसान और सुविधाजनक बन सके। सुबह जब हम उठते हैं, तो उठने के बाद हम आराम से जब तक चाय पी रहे होते हैं ना, तब तक कई मजदूर भाई लोग अपना काम शुरू कर चुके होते हैं। कोई ईंट उठा रहे होते हैं, तो कोई सीमेंट मिला रहे होते हैं, कोई खेतों में फसल की देखभाल कर रहे होते हैं। यानी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सुविधाएं हमें दिखाई देती हैं, उनके पीछे किसी न किसी श्रमिक भाई या बहन की मेहनत जरूर छिपी होती है। इसीलिए तो कहा भी जाता है कि श्रमिक हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जिस तरह शरीर बिना रीढ़ की हड्डी के खड़ा हो सकता है भला, नहीं ना, उसी तरह देश की तरक्की भी श्रमिकों के बिना संभव नहीं होती। सड़कें हो या पुल हो, स्कूल हो, कोई अस्पताल हो, कोई मकान हो या खेत हो, और या फिर हो फैक्ट्रीज, हर जगह श्रमिकों की मेहनत ही दिखाई देती है। साथियों, किसान जब खेतों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी हमारे घर तक अनाज पहुंचता है। जब मजदूर काम करते हैं, तो नए घर बनते हैं, नई नई इमारतें बनती हैं। और तो और, जो फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक होते हैं, जब वो मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, तभी तो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हमारे पास पहुंचती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो मेहनतकश भाई लोग हैं, वो खुद अपनी सेहत का और अपने आराम का ध्यान नहीं रख पाते हैं, है ना? इसीलिए हमें अपने श्रमिक भाई बहनों से यही कहना है कि भाई गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, समय समय पर आप लोग आराम भी करें, सिर को ढककर काम करें, ताकि गर्मी में ना तो आपको चक्कर आए ना ही लू लगे। इसके लिए आप अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें, ना ही उसको नजरअंदाज करें। साथियों, मेहनत करने वाला हर इंसान सम्मान का हकदार है। किसी का भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, हर काम की अपनी अहमियत होती है। अगर श्रमिक ना हो हमारे आसपास, तो विकास की रफ्तार भी वहीं रुक जाएगी, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। हम जहां खड़े हैं बस वहीं खड़े रह जाएंगे। तो आइए आज हम सब मिलकर अपने श्रमिक भाई बहनों की मेहनत को सलाम करें और उनका सम्मान करेंगे, उनका भी संकल्प लें, क्योंकि उनकी मेहनत से ही देश आगे बढ़ता है और हमारी जिंदगी भी तो आसान बनती है। क्योंकि समृद्धि जो होती है वो सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि मेहनत से, लगन से और लगातार आगे बढ़ने की सोच से आती है। जिंदगी में रास्ते तो कई बार मुश्किल जरूर हो जाते हैं, लेकिन साथियों, मेहनत करना जो जानते हैं ना, वो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। और मेहनत से

0: साथियों, हमारे देश में कई ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं जो हमें आस्था, सेवा और प्रकृति से जुड़ने की सीख देते हैं। इन्हीं खास पर्वों में से एक पर्व है गंगा दशहरा, जो कि हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। तो चलिए ज्ञान सागर में इसी पर जानकारी आपको दे देते हैं। साथियों, मान्यता ये है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी, इसलिए इस दिन को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की थी, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा जो थी वो धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन गंगा माँ का जो बहाव था वो बहुत तेज था, तो वो इस तरह से तो अवतरित हो नहीं सकती थी। तो भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में पहले धारण किया और फिर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। तभी से गंगा नदी को पवित्र और जीवन देने वाली नदी माना जाता है। साथियों, आपसे बातें करते करते मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है जो कि इसी से जुड़ा है। चलिए सोच कर रखिएगा। आपको बताना है कि गंगा नदी किस ग्लेशियर यानी हिमनद से निकलती है। आसान सा प्रश्न है ना? चलिए सोचिए सोचिए, तब तक आगे की बात करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे गंगा दशहरा पर, जिसका महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। ये पर्व हमें साफ पानी, साफ नदियों और प्रकृति का महत्व भी समझाता है, क्योंकि गंगा नदी करोड़ों लोगों के जीवन का सहारा है। ये पीने के लिए, खेती के लिए काम आती है, इससे कई जरूरी काम पूरे होते हैं। इस दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जरूरतमंदों को अनाज भी देते हैं, उन्हें कपड़े देते हैं, फल देते हैं, पानी के घड़े देते हैं, छाता, चप्पल और पैसे भी दान करते हैं। कहते हैं कि ठंडी चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा पुण्य भी ये है कि हम नदियों को साफ रखें, पानी को बर्बाद ना करें। अगर पानी गंदा होगा तो उसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ेगा, है ना साथियों? तो इसीलिए हमें संकल्प लेना है कि हम जल बचाएंगे, नदियों को स्वच्छ रखेंगे, क्योंकि स्वच्छ जल ही स्वस्थ जीवन की पहचान होती है। और स्वस्थ जीवन तो तभी हो सकता है जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, खास तौर पर हमारी श्रमिक महिलाएं। जी हाँ, जो हमारी श्रमिक महिलाएं होती है ना, वो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, या फिर सबसे आखिर में रखती हैं, है ना बहनों? लेकिन याद रखिए, आपका स्वस्थ रहना ही आपके परिवार की ताकत है, इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना परिवार के बाकी सदस्यों का आप रखती हैं। तो फिर चलिए, आज हम आपको डॉक्टर रश्मि सक्सेना से सुनवाते हैं ये बातचीत कि आप अपना ख्याल कैसे रख सकती हैं।
1: नमस्ते मैम। अक्सर जो श्रमिक महिलाएं होती हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर जरा भी जागरूक नहीं होती। वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचती हैं, अपने बारे में नहीं। तो आपके अनुसार महिलाओं की जो स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं और उनका इलाज कैसे किया जा सकता है?
2: यंग एज पे 15 से लेकर 30 साल तक की महिलाओं में आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या आ रही है, जिसको हम PCOS कहते हैं।
1: ओके।
2: दूसरी जो समस्या लेडीज में रहते हैं, जो श्रमिक महिलाओं में ज्यादा है, वो सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की समस्या।
1: अच्छा।

0: ब्रेस्ट कैंसर की समस्या है, और एक चौथी समस्या है उम्र जैसे बढ़ती है मासिक धर्म बंद हो जाते हैं तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, और उसके कारण जोड़ों का दर्द, खास करना घुटने का दर्द, और जिसका कि कोई इलाज नहीं है, और एक समय के बाद डॉक्टर्स कह देते हैं आप घुटना जल्दी चांस करा लो, तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या इस समय मतलब समाज में है। इनके लिए ना देखो पीसीओएस के लिए श्रमिक ग्रुप में तो ये कम होना चाहिए, ये ना इसमें चीनी और मैदा से बनी चीजों का उपयोग कम करना होता है, और रेगुलर एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, अपना वेट मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये थोड़ा सा ना 15-16 साल के बच्चों की ज्यादा समस्या है, क्योंकि आजकल वो चाउमीन मोमोज ये डाइट में काफी आ गए हैं,
1: ज्यादातर यही चीजें चल रही हैं जी।
0: सर्वाइकल कैंसर के लिए ना लेडीज को आजकल ये सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है

0: 15-16 साल के बच्चों की ज्यादा समस्या है, क्योंकि आजकल वो चाउमीन मोमोज ये डाइट में काफी आ गए हैं,
1: ज्यादातर यही चीजें चल रही हैं जी।
0: सर्वाइकल कैंसर के लिए ना लेडीज को आजकल ये सर्वाइकल कैंसर का जो टीका है वो बहुत ही लाभदायक साबित हुआ है। कॉस्ट की वजह से अर्बन एरिया में तो उसको मतलब काफी लोग लगवा रहे हैं, लेकिन अभी रूरल एरिया में इसका कवरेज काफी कम है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस टीके को सब्सिडाइज रेट में लेकर आके लोगों को कवर कर सके। वैसे देखो बहुत महंगा भी नहीं है, 2000 का एक टीका पड़ता है और 3 डोज लगती है।
1: अच्छा
0: ठीक है
1: जी।
0: ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो उन्हें अपने को रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा, अगर कोई गांठ कोई चीज मिलती है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
1: तो इसके लिए नियमित जांच करवानी जरूरी होती है या कैसे करें?
0: देखो 35 साल के बाद ही अक्सर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है, तो उस समय अगर किसी चीज पे डाउट लगता है, कोई गांठ महसूस होती है, तो आप चेकअप करा लो, 2 साल में एक बार डॉक्टर से मिल लो, ऐसा कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो मतलब नियमित जांच करवाते रहें तो वो इस तरह की जैसे परेशानी अगर आनी होगी तो वो भी समय से पता लग के
0: समय से पता लग जाएगा तो उसका इलाज संभव है।
1: अच्छा मैम, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो श्रमिक महिलाएं होती हैं या जो आम महिला होती हैं वो गर्भावस्था के दौरान अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं ठीक से, तो उनको ऐसी महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए?
0: देखो वैसे तो सरकार उसकी काफी योजनाएं हैं और वो बहुत मदद करती है। आयरन कैल्शियम की गोलियां फ्री में बटती हैं, ये जो आशाएं हैं ये मतलब बहुत ही जिम्मेदारी से टीके लगाती हैं, 2 टीके उन्हें लगने चाहिए, तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश रहती है कि लेडीज को जितनी मदद करी जा सके। इसके बाद भी ना जो वो अपने स्तर पे कर सकती हैं वो ये है, तो वो आयरन कैल्शियम की गोलियां खाएं, टीका लगवाएं और पौष्टिक आहार खाने की कोशिश करें, हरी सब्जियां फल दालें अपने खाने में ज्यादा रखें, दूध और दूध से बनी चीजें रखें, पनीर दही इन चीजों का सेवन जरूर से करें, इससे कैल्शियम प्राप्त होता है। चने और किशमिश चुकंदर इन चीजों से ना आयरन प्राप्त होता है, तो इन चीजों को अपनी डाइट में अधिक मात्रा में रखें।
1: अगर ध्यान रखूंगी तो अपने कुपोषण का शिकार भी नहीं होंगी।
0: थोड़ा डाइट का ध्यान रखें, इसके अलावा ना बस आयरन कैल्शियम की जो गोली आपको मिलती है अगर वो भी आप नियमित तौर पे खाते हो तो आप बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाते हो। खून की कमी एक सबसे बड़ी समस्या है गर्भावस्था के दौरान, और ये जो कैल्शियम की कमी हो जाती है जो कि ना लास्ट लेटर स्टेजेस तक समस्या देती है, उसे बचा जा सकते हैं।
1: सही बात है। अच्छा मैम, जैसे कई बार औरतों को इसका पता नहीं होता कि गर्भ निरोधक कैसे विकल्प क्या हैं इसके और वो कैसे इसका चयन कर सकती हैं?
0: मोटे तौर पे ना 4 विकल्प हैं। एक तो सभी जानकार हैं कॉन्डोम होता है, दूसरा ये 5 साल का इंजेक्शन कॉपर टी
1: जी
0: जो फ्रीडम 5 कॉपर टी के नाम से प्रचलित है ना
1: जी,
0: एक 3 महीने का इंजेक्शन लगता है डिम्पा इंजेक्शन
1: ओके,
0: और एक गोलियां खा सकते हैं वो लोग
1: जी,
0: तो बेहतर है उसके लिए उन्हें डॉक्टर से मिलना पड़ेगा कि किसको क्या चीज सूट करेगी, ये एक बार डॉक्टर से बात करके वो एक बार ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये चीजें ना अधिकतर सभी को सूट करती हैं।
1: अच्छा,
0: इसके कोई खास साइड इफेक्ट
1: अच्छा।
0: समाज में प्रचलित है कि बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, पर अगर आप एक बार डॉक्टर से मिलकर सही चीज को सिलेक्ट करके लेते हो तो उन्हें साइड इफेक्ट्स नहीं है, जितने की अबॉर्शन से है। अगर अबॉर्शन नहीं होता है तो महिला की सेहत समय के साथ अच्छी हो ही जाती
1: है। बिल्कुल, और वैसे भी कहते हैं कि अबॉर्शन कराना ना सेहत के लिए ठीक होता है और ये तो सामाजिक अपराध भी है।
0: अबॉर्शन सेहत के लिए भी खराब है, फिर फैमिली पे मनी का भी बर्डन पड़ता है
1: जी, बिल्कुल
0: खर्चा भी है और सेहत भी जाती है और कुछ हासिल भी नहीं होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर इससे बचाव हो सके तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज होगी।
1: अच्छा मैम, एक समस्या और आ जाती है महिलाओं में, वो है मेनोपॉज, तो उसके बाद महिलाओं को स्वास्थ्य का क्या विशेष अपना देखभाल करना पड़ता है?
0: मेनोपॉज के बाद ना हमारे हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं है ना, तो उससे एक सबसे बड़ी जो समस्या है जो मैंने पहले बोला ना कि कैल्शियम डाउन होता है हमारा, शुरू के 4-5 साल में ही ना 30% कैल्शियम डाउन हो जाता है। तो पहली चीज तो यह है कि मेनोपॉज के टाइम पे आपकी हड्डी कितनी मजबूत है, अगर आपकी हड्डी पहले से ही कमजोर है तो वो और 30% डाउन हो जाएगी है ना, तो पहली बात तो अपनी हड्डियों को शुरू से मजबूत रखो।

0: को कैल्शियम प्रेगनेंसी में गर्भावस्था के दौरान और जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो जरूर खाओ। काफी सारी लेडीज हमारे समाज में ना मिट्टी खाती हैं, वो कैल्शियम की कमी से खाती हैं, है
1: अच्छा
0: ना।
1: जी
0: और जब मीनोपॉज आए 35 के बाद तो कहते हैं लेडीज को जरूर कैल्शियम खाना चाहिए, पर कैल्शियम डिपॉजिट होने के लिए विटामिन डी भी चाहिए, जिसकी काफी कमी आजकल समाज में देखने को मिल रही है।
1: जी
0: तो एक तो आधा घंटा धूप में जरूर बैठे, है
1: जी
0: ना। एक्सरसाइज, कैल्शियम डिपॉजिट भी ना तब होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं।
1: अच्छा
0: मतलब ये जो घर की काम है ना, ये एक्सरसाइज में नहीं आते, इससे नहीं। आपको ना थोड़ा सा वेट वाला काम करना पड़ता है। जैसे पहले
1: अच्छा
0: लोग करते थे ना, खेतों में काम करते थे
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: गायों की सेवा करते थे,
1: जी
0: तो थोड़ा ना
1: बिल्कुल
0: आपको वेट लिफ्टिंग वाला काम जो होता है ना, उससे कैल्शियम हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम हड्डियों में डिपॉजिट होता है।
1: अच्छा। जैसे मैम कैल्शियम की गोली बिना डॉक्टर की सलाह के ली जा सकती है या
0: हाँ,
1: कितने
0: कैल्शियम की गोली तो बिना डॉक्टर की सलाह पे भी ली जा सकती है।
1: समय तक ले सकते हैं?
0: अब देखो, गर्भावस्था में तो खानी खानी चाहिए, जब तक दूध पिलाते हैं तब भी खाना चाहिए, तब कैल्शियम की जरूरत प्रेगनेंसी से भी ज्यादा होती है, तो
1: अच्छा
0: उस समय खानी चाहिए। 35 के बाद बीच बीच में खा सकते हैं, अब कोई भी चीज रेगुलर तो नहीं खा सकते हैं, है ना। तो बीच बीच में आप लेते रहो। मीनोपॉज जब होता है ना, उस समय आपको कैल्शियम जरूर लेना चाहिए, लेकिन उस समय ना एक्सरसाइज भी आपको अपने रेगुलर रूटीन में लानी पड़ेगी।
1: ठीक है मैम, आपने हमसे इतनी ढेर सारी बातें की और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो साथियों, आपने अभी डॉक्टर रश्मि सक्सेना से जाना कि हमारी मजदूर बहनें किस तरह अपना ध्यान रख सकती हैं। वही तेज धूप में काम करते समय आप बहनों अपने सिर को दुपट्टे से या कपड़े से ढककर जरूर रखें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। इस गर्मी में तो आप बिल्कुल भी ना करें। और इसके अलावा सत्तू, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी जैसी ठंडी चीजें लेते रहें। खाली पेट आप बिल्कुल भी काम ना करें। हल्का और जो खाना जल्दी पच जाता है उसे ही खाएं। अगर आपको काम करते समय चक्कर आए या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत काम को वहीं छोड़ दें और तुरंत छांव में बैठकर आराम कर लें। इसके अलावा अपने पास आप ORS का घोल रख सकती हैं, इसको समय समय पर पीते रहें और दिन भर में भी पानी जरूर पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना हो, ना ही लू लगे। बहनों, आप परिवार की शक्ति हैं, इसलिए अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज ना करिए। आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो हर जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएंगी। चलिए साथियों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की पाती में ये पत्र हमें कहां से आया है। तो ये पत्र हमें आया है अकोला गांव से, मुन्नी देवी, राजकुमारी, दीपू सिंह, प्रदीप चौहान, अश्विनी, राजू, मुन्नू और उनके माता पिता का। ये सभी सुनना चाहते हैं टेलीफोन फिल्म का गीत। तो चलिए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं किशोर कुमार का ये गीत।

साथियों, हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि गंगा नदी किस ग्लेशियर यानी हिमनद से निकलती है, तो इसका जवाब है गंगोत्री। जी हाँ, गंगा नदी की प्रधान शाखा है भागीरथी, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री से निकलती है। तो इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी मनीषा अरोरा को अनुमति दीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं 7 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामासामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के

0: पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at an investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajan also was honoured with Padma Vibhushan. In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was awarded Padma Bhushan for his services in the field of public affairs. Besides, Shanta Vadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received the Padma Bhushan for his contribution to trade and industry, while Dr. Kallipatti Ramasamy Pallaiswamy received the award in recognition of his outstanding contribution to the field of medicine. Those eminent personalities who have been honoured with Padma Shri include Indian women's cricket team captain Harmanpreet Kaur Bhullar for her contribution in the field of sports and Taga Ram Bhil for his contribution in the field of arts. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy, among others, were also present on the occasion. For the year

जिले में स्थित सुबलदाहा नामक ग्राम में विनोद बिहारी बोस और भुवनेश्वरी बोस के यहाँ 25 मई 1886 को जन्मे रास बिहारी बोस उन कतिपय स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जिन्हें महात्मा गांधी का पूर्वगामी होने का गौरव प्राप्त है। देहरादून के वन अनुसंधान के एक हेड क्लर्क के रूप में कार्य करते हुए रास बिहारी बोस युगांतर संगठन के जतिन मुखर्जी वे अग्रेंद्र चटर्जी के प्रयासों से क्रांतिकारी बंगाल का हिस्सा बने। अरविंदो घोष के राजनीतिक शिष्य जतेंद्र नाथ के संपर्क से रास बिहारी बोस संयुक्त प्रांत के आर्य सामाजी क्रांतिकारी गतिविधियों से परिचित हुए। दिल्ली दरबार, जो कि ब्रिटेन राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा में 12 दिसंबर 1911 को आयोजित किया गया था, उसी क्रम में चांदनी चौक से निकल रहे जुलूस में तत्कालीन वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की ऐतिहासिक योजना रास बिहारी बोस के मस्तिष्क की ही उपज थी, जो बस अनंत विश्वास व तन्मय के माध्यम से क्रियान्वित हुई, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग बाल बाल बच गए तथा रास बिहारी बोस रातों रात देहरादून पहुंचकर अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से स्वयं को बचाते हुए बम कांड की आलोचना में सभाएं आयोजित करने लगे, अतः सरकार की दृष्टि से बचने में सफल हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने गदर की योजना बनाई, किंतु कालांतर में सरकार को संदेह हो जाने के कारण 1915 में रास बिहारी बोस P.S. ठाकुर के छद्म नाम से सर्वप्रथम जापान के शहर कोबे पहुंचे तथा वहां से टोक्यो गए तथा वहां आज़ादी के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने अंग्रेजी अध्ययन प्रारंभ किया तथा पत्रकारिता व लेखन भी शुरू किया। न्यू एशिया नामक पत्र का संपादन रास बिहारी बोस द्वारा ही किया गया। जापानी भाषा में पारंगत होने पर उन्होंने इस भाषा में 16 पुस्तकें लिखीं व रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद भी किया। उन्होंने टोक्यो में एक होटल खोलकर भारतीयों को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। जापान में रास बिहारी बोस ने विभिन्न पैन एशियन समूहों को संगठित करना प्रारंभ किया। उन्होंने जापानी सरकार पर ब्रिटेन के द्वारा प्रत्यार्पण के बढ़ते दबाव से बचने के लिए अपनी पहचान और रहने का स्थान 1915 से 1918 के बीच कई बार बदला। 1918 में रास बिहारी बोस ने नाकामुराया बेकरी के स्वामी सोमा आइजो तथा सोमा कोत्सुको की पुत्री से विवाह कर लिया। उन्होंने 1923 में जापान की नागरिकता ले ली तथा अपनी पहचान एक पत्रकार एवं लेखक के रूप में स्थापित कर ली। अपना सुदृढ़ धरातल बनाने के बाद रास बिहारी बोस ने 28 मार्च 1942 को टोक्यो में एक सम्मेलन बुलाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का निर्णय लिया। इस निर्णय में भारत की आज़ादी के लिए एक सेना के गठन का भी प्रस्ताव था। 22 जून 1942 को बैंकॉक के दूसरे सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को लीग में अध्यक्षता का प्रस्ताव दिया गया। मलाया एवं बर्मा में जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को इंडियन नेशनल आर्मी में सैनिक के रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की एक शाखा के रूप में रास बिहारी बोस द्वारा गठित एवं विकसित किया गया व आज़ाद नाम से इसके झंडे का चयन कर इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया। रास बिहारी बोस सफलता का शिखर छूने ही वाले थे कि जापानी सैन्य कमान ने

0: उन्हें और मोहन सिंह भागना को आईएनए के नेतृत्व से हटा दिया। भारत की गुलामी से आजाद कराने के प्रयास वे उसका स्वप्न देखते हुए 21 जनवरी 1945 को जापान में रास बिहारी बोस का निधन हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1959 में उनकी पुत्री तेत्सु हिगुची उनके अवशेष भारत लाई थी तथा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भारत के इस वीर पुत्र को स्वयं श्रद्धांजलि दी। इनके निधन से पूर्व जापानी सरकार से इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के सम्मान से अलंकृत किया गया। रास बिहारी बोस की जापानी भाषा में बोस ऑफ नाकामुराया एन इंडियन रेवोल्यूशनरी इन जापान नामक शीर्षक से जीवनी लिखने वाले प्रोफेसर ताकाशी नाकाजीमा लिखते हैं कि बोस न केवल अपने राजनीतिक गतिविधियों के कारण जापान में लोकप्रिय हैं, समय तथा प्राथमिकता का अंतर है कि भारत की सेवा में प्राण गंवाने वाला अपनी मातृभूमि से अधिक अपनी कर्म भूमि में लोकप्रिय है। आज रास बिहारी बोस भारत में इतिहास की कक्षा में एक दिन का शीर्षक बनकर ही सीमित हैं। देश की स्वतंत्रता में सक्रियता की दृष्टि से रास बिहारी बोस का योगदान अविस्मरणीय तथा अमर है। बस आवश्यकता है तो भारतीय जनमानस को इस विलक्षण प्रतिभा से परिचित कराने की।
1: श्रोताओ, विविधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता एक विलक्षण क्रांतिकारी रास बिहारी बोस। वार्ताकार थे अनिल कुमार वर्मा। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अगला प्रसारण आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
5: इतनी भी क्या जल्दी थी?
4: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
5: और
4: ये
5: मेरी गुड़िया के नाम।
6: पर दादी, आपके नाम?
7: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो। क्या
7: आरबीआई कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान। लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
10: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज 66 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया।

0: उत्तर प्रदेश से आज 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन।
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
0: शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी और उच्च प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर उनका स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
2: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीचंद शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ में स्नातक सीट पर अवनीश कुमार सिंह, जबकि शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। आगरा की स्नातक सीट पर डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह पार्टी प्रत्याशी होंगे। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गंगा तट को 4 सेक्टर में बांटा है। गंगा नदी में 50 नाव और करीब 50 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी आसपास के जिलों और राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही भक्त गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम सहित रामघाट, दारागंज और वीआईपी घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए कल रात से ही आसपास के जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रार्थना, दान और भेंट अर्पित कर समृद्ध और खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी कल पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।

0: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज, जालौन, उरई, आगरा और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने हीटवेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
1: जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
0: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
2: 42-43 डिग्री से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं, जो चौक चौराहे हैं जहां पे ट्रैफिक लाइट है, जहां पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहां पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। जो CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहां ट्रेनिंग्स दी गई हैं।
0: मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि हाथरस, मथुरा, मैनपुरी समेत पश्चिमी संभाग के जनपदों में आज रात बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। नौतपा की शुरुआत के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर का आज फलों के रस से विशेष अभिषेक किया गया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार नौतपा के सभी 9 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, भारत एक ऐसा सनातन राष्ट्र है जहां नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि वे संस्कृति, चेतना और साक्षात दिव्यता का स्वरूप है। जी हां श्रोताओं, आज हम सभी पावन पर्व यानी दशहरा का पावन पर्व मना रहे हैं जो कि हमारी गंगा माँ को समर्पित होता है। श्रोताओं, नदियों में

माँ गंगा का स्थान सर्वोपरि है। गंगा भारतीय जनमानस की आस्था, अध्यात्म, इतिहास और उसकी जीवन रेखा की धुरी है। श्रोताओ, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह मनाया जाने वाला ये गंगा दशहरा का पर्व इसी परम पावन नदी के पृथ्वी पर अवतरण का उत्सव है। जी हाँ श्रोताओ, ये पर्व जहां एक ओर हमें माँ गंगा के अलौकिक आध्यात्मिक महत्व का स्मरण कराता है, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान में यह हमें एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील संदेश भी देता है। गंगा की स्वच्छता और अविरलता को अक्षुण बनाए रखने का संदेश। श्रोताओ, इस पावन पर्व के विभिन्न आयामों, इसके ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व और वर्तमान समय में गंगा के संरक्षण पर आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे। श्रोताओ, गंगा दशहरा का संबंध हम आपको सबसे पहले बता दें कि भागीरथ की कठोर तपस्या और माँ गंगा की पृथ्वी पर आगमन से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इक्ष्वाक वंश के जो राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति दिलाने और उनकी आत्मा के उद्धार के लिए केवल गंगा का पवित्र जल ही एकमात्र साधन था। तब राजा सगर के वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार का वीड़ा उठाया। उन्होंने सहस्त्रों वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दे दी। श्रोता, समस्या ये थी कि गंगा का वेग इतना तेज था कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती तो पूरी पृथ्वी उनके तेज से रसातल में चली जाती। अब इस संकट के समाधान के लिए भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने गंगा के अहंकार और वेग को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपने जटाजूट में समाहित कर लिया। इसके बाद ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन शिवजी ने अपनी एक जटा को खोला, जहां से गंगा अत्यंत सौम्य और कल्याणकारी रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इसी महान घटना की याद में श्रोताओ, प्रतिवर्ष हम सभी गंगा दशहरा मनाते हैं। श्रोताओ, कहा जाता है कि गंगा माँ हमारे सभी पापों को धो देती हैं, हमारे सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली हैं। हमसे जाने अनजाने में जो भी कोई पाप हो जाता है और हम गंगा में स्नान करके, उनकी आराधना करके अपने उन पापों से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेते हैं। श्रोताओ, गंगा कितनी महान और कितनी पवित्र है कि वो हमारे पापों को भी नहीं देखती और उसको भी दूर कर देती हैं, हमें पापों से छुटकारा दिला देती हैं। फिर हम इस गंगा माँ के लिए क्यों नहीं कुछ सोचते? आज वर्तमान में हम इसको गंदा क्यों कर रहे हैं? हम उस भारत में रहने वाले, उस भारत के देश के नागरिक हैं जहां गंगा को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, फिर हम अपनी माँ को ही नहीं समझते? श्रोताओ, ये एक सोचनीय विषय है। गंगा माँ तो हमें सिर्फ देती ही है, हमें औषधीय गुण देती है। कहा जाता है श्रोताओ कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज एक नामक वायरस पाया जाता है जो पानी को सड़ाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को स्वतः ही नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त हिमालय की जड़ी बूटियों और खनिजों के स्पर्श के कारण गंगा जल में रोग नाशक और प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। हम देखते भी हैं श्रोताओ, हमारे घरों में सालों तक हम गंगा जल को रखते हैं और वो ऐसे ही रहता है, उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ता।

यानी कितनी पवित्र है ये माँ। श्रोताओं, जिस गंगा को हम माँ कह रहे हैं, माँ कहकर पूजते हैं, आज मानवीय स्वार्थ, औद्योगिकरण और नागरिक उदासीनता के कारण वही गंगा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर इस कड़वी सच्चाई का सामना करना और इस पर विचार करना श्रोताओं अत्यंत आवश्यक है। चलिए इसी विषय पर और बातें करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: श्रोतो, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि गंगा माँ को जो प्रदूषण हो रहा है उसका कारण क्या है। हम रोज देखते हैं पर शायद ध्यान नहीं देते। जी हाँ, कारखानों और कपड़ा मिलों का जहरीला केमिकल युक्त पानी जो सीधे गंगा में बहा दिया जाता है, करोड़ों लीटर श्रोताओं घरेलू अपशिष्ट और सीवेज का पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के प्रतिदिन गंगा में गिरता है, तीर्थयात्रियों और स्थानीय निवासियों द्वारा पूजा सामग्री, प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां और कपड़े नदी में बहा दिए जाते हैं। यहां तक कि धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण कई स्थानों पर शवों या पशुओं के अवशेषों को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे जल जनित बीमारियां फैलती हैं। श्रोताओं, विडंबना देखिए कि जो जल हमारे पापों को धोने की सामर्थ्य रखता है, आज वह स्वयं मानवीय लालच के मैल से करहा रहा है। गंगा का श्रोताओं आचमन करना तो दूर, कई जगहों पर यह जल स्नान करने के योग्य भी नहीं बचा है। श्रोताओं, यदि हम वास्तव में गंगा दशहरा मनाना चाहते हैं और मां गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। केवल नदी में डुबकी लगा लेने से या किनारे पर खड़े होकर आरती कर लेने से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता। श्रोताओं, गंगा को साफ रखने के लिए समाज के हर वर्ग को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, हर वर्ग के लोगों को सामने आना होगा। अब इसके लिए छोटे छोटे से प्रयास हैं जो हम सभी अगर करते हैं तो हम अपनी गंगा माँ को स्वच्छ और निर्मल रख सकते हैं। देखा जाता है कि जो घर में पूजा पाठ होता है और जो उनकी चीजें जो होती है वो गंगा में बहा दी जाती हैं। इसके लिए फूलों की माला, धूप बत्ती, अगरबत्ती के जो अवशेष हैं या देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियों को सीधे गंगा में श्रोताओं कभी ना फेंकें। इसके स्थान पर स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाए गए कृत्रिम विसर्जन कुंडों का उपयोग करें और जब भी गंगा किनारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, अपने साथ कपड़े का एक थैला जरूर रखें। प्लास्टिक की बोतलें और रैपर्स को घाटों पर यूं ही न छोड़ दें, उन्हें डस्टबिन में ही डालें।

श्रोताओं, वैसे भी कहा जाता है कि गंगा नदी में कभी भी साबुन या शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ध्यान रखें कि इनका उपयोग बिल्कुल ना करें और नदी किनारे कपड़े बिल्कुल ना धोएं। साथ ही श्रोताओं, अपने परिवार, बच्चों और मित्रों को नदी के बारे में बताएं, उन्हें समझाएं कि नदी स्वच्छ रहेगी तभी तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।

समझाएं कि नदी स्वच्छ रहेगी तभी तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। और वैसे भी श्रोताओं, हमें सारी बातें बस सरकार के ऊपर टाल देते हैं, सरकार करेगी। भाई, हम अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? सरकार तो कर ही रही है, तो उसके जो बनाए हुए नियम हैं उनका उल्लंघन न करें, यही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो करके हम अपनी गंगा माँ को सही, साफ, स्वच्छ, निर्मल रख सकते हैं, उसमें अपना योगदान हम सभी को देना चाहिए। श्रोताओ, गंगा दशहरा का पर्व हमें सिखाता है कि जिस प्रकार भगीरथ ने अपने अडिग संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया और गंगा को पृथ्वी पर लाए, उसी प्रकार आज के युग में हम सभी नागरिकों को स्वच्छता भागीरथ बनना होगा। जी हाँ, हमें समझना होगा कि गंगा केवल जल की धारा नहीं, वह भारत देश की आत्मा है। यदि गंगा प्रदूषित होती है तो हमारी संस्कृति, हमारा स्वास्थ्य और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी प्रदूषित और कमजोर होंगी। श्रोताओं, हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी गंगा माँ को दूषित नहीं करेंगे। आगे अभी और भी बातें आपसे करेंगे, लेकिन पहले आपके लिए ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओ, यदि हम सभी गंगा मैया को बचाने में सफल होते हैं तो भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। श्रोताओ, गंगा के मैदानी इलाके दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं मैदानों में उगने वाले अनाज से अपना पेट भरता है। श्रोताओ, गंगा का जल शुद्ध रहेगा तो खेतों को अच्छा पानी मिलेगा, जिससे फसलें सुरक्षित होंगी और देश में खाद्यान्न का संकट कभी नहीं आएगा। और श्रोताओ, जन स्वास्थ्य की रक्षा होगी। इसके अलावा हम सभी जानते हैं श्रोताओ कि रोजगार और पर्यटन को हमेशा बढ़ावा मिलता है। ऋषिकेश हो, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे शहरों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गंगा और उन पर आधारित पर्यटन पर टिकी है। श्रोताओ, साफ सुथरे घाट और निर्मल जल न केवल देश के बल्कि विदेशों के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। श्रोताओ, गंगा मैया को बचाकर ही भविष्य अच्छा हो सकता है, ये कोई एक नारा नहीं है बल्कि कड़वी सच्चाई है। यदि आज हमने लापरवाही दिखाई तो आने वाली पीढ़ी को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गंगा की रक्षा करना दरअसल हमारे अपने खुद के भविष्य की रक्षा करना है।

श्रोताओ, इसी के साथ कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अब यही समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शामी गजल। आइए सुनते हैं फिल्मों से चंद गजलें।

श्रोतो, आवारगी फिल्म से ये गजल अभी आपने सुनी। स्वर दिया था गुलाम अली ने, शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे अन्नू मलिक। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में फैज अनवर का कलाम। निखिल विनय के संगीत निर्देशन में फिल्म है तुम बिन।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुनी फिल्म हंसते जख्म से गजल स्वर्था लता मंगेशकर का, शब्द रचना कैफे आजमी की और संगीत था मदन मोहन का। सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम गजल।
1: रात भर वो टूट टूट कर गिरते रहे, आशिकों की तड़प सितारों से भी देखी जाती नहीं। जब हजारों सितारों की होती है ख्वाहिश, तब कोई करता है किसी के प्यार की तमन्ना।

श्रोताओं, महेंद्र कपूर और भूपिंदर सिंह के गाए फिल्म दहलीज की इस गजल के साथ ही कार्यक्रम शामे गजल अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:30 हुए हैं। चित्रपट संगीत में आइए सुनते हैं कुछ और गीत।

श्रोताओं, तकदीर फिल्म के इस गीत को गा रहे थे मोहम्मद रफी। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं मुकेश के स्वर में फिल्म एक हसीना दो दीवाने का ये गीत।

श्रोताओं, लता मंगेशकर के गाए फिल्म बॉबी के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री ने वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी

0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को, सार्वजनिक

0: मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी पलाना स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
4: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
5: Several key agreements were signed.
6: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
5: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
7: Against the assessment of
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
8: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई

0: से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
3: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.
2: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. More from our correspondent.
4: In the category of Padma Bhushan, former Uttarakhand Chief Minister and Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari was conferred with this award for his services in the field of public affairs, while BJP leader Vijay Kumar Malhotra was awarded posthumously in public service category. Besides, Sata Vadhani, Dr. R. Ganesh received the award in the field of art, while advertising legend P.O.S. Pandey was honored posthumously. Industrialist Uday Suresh Kumar Kotak received Padma Bhushan for his contribution in trade and industry, and Dr. Kallipatti Ramaswamy Palaniswamy received the award for his contribution in the field of medicine. Among those honored with Padma Shri include Indian women's cricket team.

0: ओवर छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, झारखंड एंड उत्तराखंड टिल टुमारो. The IMD has also predicted hot and humid weather over Gangetic West Bengal, Konkan, Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. According to the Met Department, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Bihar, Kerala, Mahe, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Lakshadweep, Madhya Maharashtra, North Interior Karnataka and Northeastern region tomorrow. At the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medals today. In the 57 kg freestyle category, Akshay Tanaji Dhere defeated Yelaman Amangaldiyev 4-2 to claim the top podium spot. Meanwhile, in the 97 kg freestyle category, Vicky also struck gold after a closely fought 7-5 victory over Sherzod Poyonev. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under-23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शमी मैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 226 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायरन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एमएसएमईज को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीद कारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के पहलवान विकी और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैंपियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा सिविल इन्वेस्टर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर सीपी राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज्रा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर

0: गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
1: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ एफ से शुरू होने वाली 3 चीजों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की जरूरत को उजागर किया है। ये 3 चीजें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और जर मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्जों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मीशत ने मजाहिमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुताल बैंक सिडबी के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निजाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीदकारी के काम को तेज रफ्तारी अता करना है। जिन स्कीमों का आज आगाज किया गया उनमें सिडबी मैकफिन मार्ट शामिल है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद MSMEs को तआवुन देना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत का पॉलिसी रद्द अमल पूरी देखभाल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद मुल्क की तरक्की का तहफ्फुज किया जा सके। भारतीय फौज और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली कौमी फोर्स NDRF और रियासती फोर्स SDRF जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग गंडोला में राहत और बचाव की एक कार्रवाई की सरबराही में शामिल थे। गंडोला केबिर कार के निजाम में तकनीकी खराबी के बाद यह कार्रवाई की गई। बेस स्टेशन और फेस वन के दरमियान खिदमात के अचानक मुअत्तल हो जाने के सबब पैदा होने वाली खराबी के बायस आज कई सैयाह वहां फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाए मौका पर फौरन पहुंच गईं। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस कुल 65 केबल कारें मुतासिर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सयाहों को बहिफाजत महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है। इधर तकनीकी टीमें इस खराबी का जायजा ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में बार बार होने वाली गलतियों पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह अफसोसनाक बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के इससे पहले के तनाजों से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस PC नरसिम्हा और आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और CBI से उन दरखास्तों पर जवाब तलब किए हैं, जिनमें इस टेस्टिंग एजेंसी की जगह मेडिकल दाखिले का इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए किसी ज्यादा वसी तजर्बे वाले और खुद मुख्तार इदारे को मुकर्रर किए जाने का मुतालबा किया है। अदालत ने NTA को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करे, जिसमें एजेंसी के कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने से मुतालिक इसरो के साबिक सरबरा के राधाकृष्णन की सदारत वाली एक कमेटी की जानिब से पिछले साल दाखिल करदा सिफारिशात पर अमल आवरी की तफसीलात पेश की जाए। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को NEET UG 2026 के अगले माह की 21 तारीख को होने वाले दोबारा इम्तिहान को महफूज, सिक्योर और कामयाबी के साथ मुनक्किद कराने के सिलसिले में एक खत लिखा है। जनाब प्रधान ने मुल्क भर के तमाम वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर इस सिलसिले में उनका तआवुन तलब किया है। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदामात का आज नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर अहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम पॉइंट्स, जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाहें और जमीनी सरहदें शामिल हैं, पर जांच पड़ताल के इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने अहलकारों से यह भी कहा कि वह पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इबोला वबा को बैन अवी तशवीश की अवामी सेहत से मुताल

0: एक इमरजेंसी करार दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने वजाहत की है कि अब तक मुल्क में इबोला के किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में कलदम जमात इस्लामी तंजीम से मुंसलिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत के एक मामले में 3 मकाम पर तलाशी की कार्रवाई की। कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां जिलों में 3 मकाम पर की गई तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई काबिल एतराज दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आला बरामद हुए, जिसके बारे में शुबा है कि इनका ताल्लुक रियासत में जमात इस्लामी और इसके मुतअद्दिद ट्रस्ट और तंजीमों की सरगर्मियों से है। एजेंसी के मुताबिक अब तक की तफ्तीश से यह इंकशाफ हुआ है कि ममनुआ तंजीम वादी कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के लिए फंड इकट्ठा करने और दहशतगर्दी को फरोग देने में सरगर्म रही है। यह तंजीम तालीम और सेहत जैसी फलाही सरगर्मियों के नाम पर अंदरून और बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करने के काम में मुलव्वस थी। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में कल क्वाड वजराए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पैनी वॉन्ग, जापान के वजीर खारजा तोशी मिसो मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रोबियो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वजरा तमाम तरजीही शोबों में क्वाड तआवुन को फरोग देने, इन दिनों जारी क्वाड स्कीमों की पेशरफ का जायजा लेने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों पर इजहार ख्याल समेत बाहम नौयत के दीगर बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। एक आजाद और खुले भारत बैरुल काहिल के क्वाड तसव्वुर के पेश नजर वुजरा पिछले बरस 1 जुलाई को वॉशिंगटन DC में हुई तबादले ख्याल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में यह रिपोर्ट पेश की है।
1: इस बरस वज़राए खारजा की मीटिंग आलमी गैर यकीनी और मगरबी एशिया के बहरान के वक्त मुनकिद हो रही है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड एक अहम ग्रुप के तौर पर उभरा है, जिसकी ज्यादातर तवज्जो भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम है। इत्तेहाद के मौजूदा सदर की हैसियत से भारत ये मीटिंग मुनक़िद कर रहा है। क्वाड मुल्क इस अज़्म के साथ यकजा हुए हैं कि पूरी दुनिया की बेहतरी और एक खुले, आज़ाद और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल खित्ते को ताउन देने की गरज से एक ताकत के तौर पर काम करेंगे और इसे एक ऐसा खित्ता बनाएंगे जो खुशहाल और मुजाहिम हो। क्वाड ने एक मुस्बत और अमली एजेंडा अख्तियार किया है, जिसमें हम असर मसाइल और चैलेंजों पर तवज्जो दी जा रही है। इन मामलों में सेहत से मुतालिक सिक्योरिटी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और भारतीय और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इलाकाई ममालिक के दरमियान समंदरी सरहद के निजाम से मुतालिक बेदारी को मुस्तहकम करना शामिल है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज हिमाचल प्रदेश में 1947 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह प्रोजेक्ट के मेयार और देखभाल की पेशरफ का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गडकरी ने जमीनी सतह पर अमल दरामद में तेजी लाने, मेयार की निगरानी को मजीद मौसर बनाने और असासों की पायदारी को बढ़ाने के लिए जदीद तामीराती तरीक़ेकार इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सफरी मेयार को बेहतर बनाने और अहम राहदारियों में बिला रुकावट रबते को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सरकार मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। मगरबी एशिया में हालिया सूरत हाल के बारे में आज नई दिल्ली में मुनक़िदा बैन वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में LPG की रिफाइनरी प्रोडक्शन बढ़ाकर 50,000 टन योमिया कर दी गई है।
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सिफारतखाना और कौंसुलेट भारतीय बिरादरी की खैर आफियत के लिए उनसे राबते में है। दिल्ली जिमखाना क्लब के मेंबरान ने आज मरकज के उस हुक्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है, जिसमें क्लब से कहा गया था कि वो अगले माह की 5 तारीख तक जिमखाना की इमारत हुकूमत के सुपुर्द कर दें। अदालत ने इस मामले की समाअत के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस लीडर अलका लांबा को 2024 में जंतर मंतर पर एक एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार पर हमले से मुतालिक एक मामले

में कसूरवार करार दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने लांबा को कसूरवार करार दिया और सजा के मुतालिक दलाइल की समाअत के लिए 5 जून की तारीख मुकर्रर की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक गर्म रात की सूरत हाल रहने से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद से शदीद गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और उत्तराखंड में भी कल तक इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। वियतनाम के दानांग शहर में एशियाई अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे हासिल किए हैं। 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल जुमरे में अक्षय तनाजी धीरे ने अपने हरीफ येलामैन को 2 के मुकाबले 4 से हराकर टॉप पोजीशन हासिल की। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में विकी ने शेरजोत को सख्त मुकाबले में 5 के मुकाबले 7 से हराकर सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीदकारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाईस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइन खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो
2: 3481 या 2371711 7 2371716 और 2331444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था। उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने

0: ने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की और बढ़ेगी. तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70 पॉइंट औसतम 70.3. इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है. और दूसरा है शतायु. शतायु एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं, उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं.
1: अच्छा, जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया, और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे. और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स. ये है नैना का सवाल मुंबई से.
0: जी थैंक यू नैना जी. जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा, तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी. उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है. एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं. उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे, और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
1: सकते. तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा.
1: जी,
0: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहाँ पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा. इसके अलावा वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी.
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू
1: भैया, हाँ, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा. इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा. पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा. हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं.
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा.
0: जी,
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी. हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है.
0: जी,
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो. कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है. तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी.
1: जी जी, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना हो, जो ये एक्सेस ना कर सके, तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी? जी धर्मवीर जी. और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे, कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?

0: इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना जरूरत नहीं है।
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से, कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है।
0: जी थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है, जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
0: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्य वयोश्री केंद्र है, वहां पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है।
1: जी, और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से, और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान है। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूंगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम, जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, विद ज्योग्राफिकल लोकेशन, नाम, पता। दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, MOU हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी।
0: जी इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
1: ताकि लोगों को आसानी हो।
0: संजीवनी संजय

0: संजय सूरी जी। और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
1: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से हूँ। ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं। मेरा इसमें एक इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सुरक्षित नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवा हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है, ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा वो छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी
0: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुँच बढ़ानी हो तो।
2: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है। तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुंचे।
0: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मोनाली जी, अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है।
2: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूंगी। हमारा जो 14567 है इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफ़ी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होकर चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
0: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
2: जी
0: ठीक है, मतलब ताकि जो ज्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन है उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
2: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए है आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से कि हमारे बुजुर्ग ए वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
0: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके ऐप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन है। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो,
0: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी धन्यवाद, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब तो मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है, कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को।
0: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
2: श्रीपाद जी आप पुणे से बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन होम से?
0: जी अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
2: से रहे तो हम

0: ने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है, इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहाँ से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड

0: शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन। उसके तहत ना ही, जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियां।
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: आप सभी लोगों को आगामी पर्व जो है की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
2: जी। और हाँ जी, तो मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
0: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहां के वहां पहुंचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 1-4-5-6-7 और जो कनेक्टेड है 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, अभी पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
1: जी
0: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है तो अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
0: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
1: जी दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।
3: मैं राजकुमारी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ
1: जी,
3: और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
3: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
0: नमस्कार मैम। जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 1-4-5-6-7 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री

0: पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्री वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है
1: जी। तो इसमें जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशन कैटरैक्ट के होने हैं या जो ट्रेनिंग करवानी है या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है
1: जी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
2: नमस्कार।
1: हाँ जी,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे?
0: रामाशंकर जी आपको मोबाइल टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है, आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: अगर उन्होंने का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है आप डायल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश
0: मंत्रालय ने
1: जी। राजेश नेमा जी।
3: जी
1: राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
3: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
1: जी।
3: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है? मोनाली जी,
0: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं
1: जी। तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
0: जी थैंक यू इस सवाल के लिए, हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके इससे साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
0: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
1: जी।

धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीजें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा, सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोता, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। प्रस्तुत करता है अनेंद्र सिंह।
1: सभी सुनने वालों को आपके रेडियो साथी सूर्य का नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर हम आ गए हैं लेकर आपका ये अपना कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, जहां आपकी ही बातें होती हैं, आप ही के लिए होती हैं और आपके ही द्वारा होती हैं, क्योंकि आप हैं तो ही हम हैं। श्रोताओं, आप हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। जब आपके फोन आते हैं और आप श्रोताओं से बातें होती हैं, तो हमारा भी दिन बन जाता है। तो देर ना करते हुए अब लेते हैं आज की पहली कॉल।
2: हेलो, कौन साहब बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं? सर
3: जी, मैं इटावा से बोल रहा हूं।
2: अच्छा, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज आपने कौन सा गीत सुनने के लिए कॉल किया है? सर
3: जी, आज मैंने जो नई मूवी आई है धुरंधर 2 सुना दीजिए, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है उसका, जुर्म सिर्फ इतना है।
2: हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा है।
3: थे।
2: जी, हम आपको जरूर सुनवाएंगे आप ही की फरमाइश का ये गीत। और आप क्या करते हैं सर?
3: जी, अभी मैं फार्मासिस्ट हूँ।
2: अच्छा,
3: बी फार्मा चल रहा है मेरा, स्टडी
2: चल रही है।
3: यस।
2: अच्छा, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है सर कि आपके जो भी लक्ष्य आपने सपने देखे हैं वो सभी पूरे हों, हम ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
3: थैंक यू।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है सर।
0: सर मेरा नाम सीएचएम हूँ मैं, कंपनी हवलदार मेजर विजयन सिंह चौहान। मैं आर्मी में हूँ।
1: अच्छा,
0: और राजपूत रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ मैं।
1: सर आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में, और सुनकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो भी राजपूत रेजिमेंट में थे,
0: अच्छा सर, कौन
1: लेफ्टिनेंट,
0: सी राजपूत में थे?
1: जो फतेहगढ़ में है, टू राजपूत रेजिमेंट।
0: तो हाँ हाँ बिल्कुल, पुरानी, बहुत पुरानी पलटन है, बहुत इंडियन आर्मी की बहुत पुरानी पुरानी जो ओल्ड ओल्ड पलटन है वो टू राजपूत है। जंगी इनाम है जिनको बोलते हैं, हम जंगी इनाम बोलते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: जो
1: जी
0: हमारी देश की आजादी से पहले जो रेजिमेंटे रही,
1: हाँ हाँ हाँ
0: जिन्होंने मेसोपोटामिया में, अफगानिस्तान में,
1: जी जी जी
0: है ना, रूस, रसिया में, कई जगह जा जा करके जिन्होंने जिन्होंने अपनी ही धरती पे गौरव नहीं हासिल किया है, विदेशों की धरती पर भी जा जा करके गौरव हासिल किया है।
1: अच्छा
0: मैं जो हूँ, मैं इस समय वर्तमान में फोर राजपूत का हूँ,
1: अच्छा जी
0: उसमें से नंबर वन है राजपूत जी।
1: राजपूत रेजिमेंट की खासियत तो यह है कि सबसे ज्यादा अवार्ड लेती रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत
0: करेक्ट, बिल्कुल
1: अवार्ड जीते
0: करेक्ट,
1: हैं। राजपूत रेजिमेंट का नाम आना इसलिए गर्व की बात भी है कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, KM करियप्पा साहब, वो भी राजपूत रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: जी, आपको धन्यवाद है कि आप लोग हमारे देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो कि थल, जल, नभ सब जगह से हमें सेफ किए हुए बैठे हैं। नहीं तो दुश्मन जो हैं, दुश्मन देश, वो तो हमें छोड़ेंगे ही नहीं। अब अपनी ये फरमाइश आप बता दीजिए। जी
0: हाँ, गीत की फरमाइश है, संदेश आते हैं, मेरा बहुत प्यारा गीत है ये,
1: जी जी जी
0: और कभी अकेले होते हैं तो गुनगुना भी लेते हैं, तो
1: जी
0: आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो सुना दें तो बहुत अच्छा
1: बिल्कुल
0: रहेगा।
1: सर, बिल्कुल, हम आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे।

0: हेलो,
1: हाँ,
0: कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं मैडम?
1: मैं कस्तूरी बोल रही हूँ। मैं राजा मंडी से बोल रही हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और क्या करती हैं आप?
1: घरेलू में काम करती हूँ।
0: आज आपने कौन सा गीत सुनने के लिए हमें कॉल किया है?
1: दो बिछड़े हुए दिल
0: और फिल्म कौन सी है मैडम?
1: शायर।
0: मैडम, आपने इस गीत की फरमाइश की है, ये तो बहुत ही दिग्गज गायक, झरती आवाज के मालिक, खरज आवाज के मालिक गुलाम मुस्तफा दुर्रानी साहब की आवाज है, जो कि मोहम्मद रफी साहब के उस्ताद थे। हम इस गीत को जरूर आपको सुनवाएंगे मैडम। आपने कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
1: धन्यवाद।

0: हेलो, हाँ नमस्कार सर।
1: नमस्कार, कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है सर।
0: सर मेरा नाम विनोद कुमार जैन,
1: जी सर,
0: न्यू आगरे में रहता हूँ मैं, और आपके इस प्रोग्राम को मैं बहुत पसंद करता हूँ।
1: हाँ, और आजकल आप क्या करते हैं?
0: आजकल समय सोलर का काम है मेरा।
1: अच्छा।
0: पहले इन्वर्टर को अब तो कोई लेता नहीं है
1: जी। इन्वर्टर का तो ये है कि लाइट बहुत अच्छी आ रही है, अब जाती भी नहीं है।
0: पहले के टाइम में था कि लाइट नहीं रहती थी, तो लोगों को वो था कि भाई लाइट चल जाएगी।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल, मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था
0: जी
1: तो हाई स्कूल के एग्जाम दिए थे, उस समय लाइट बहुत जाया करती थी।

0: हाँ बहुत जाती थी
1: तो
0: पहले। जी
1: मैं रात को कभी लैंप जला के, कभी लालटेन जला
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी
1: के
0: मालूम है कि पहले तो पहले कोई साधन नहीं था ना।
1: जी, तो ऐसे पढ़ता था, इमरजेंसी लाइट होती थी कभी।
0: जबी तो आप इस मुकाम पे, इस जगह पे बैठे हुए हैं।
1: सर ये आप बड़ों का आशीर्वाद है
0: नहीं, आशीर्वाद तो हमारा है ही है आपके साथ में।
1: जी।
0: जो बच्चा अपनी जिंदगी को अगर करीने से देता है और
1: जी
0: उसको समझता है कि मेरे को जिंदगी में कुछ करना है,
1: जी
0: तो वो मोमबत्ती में बैठ के भी पढ़ लेगा।
1: बिल्कुल
0: और
1: सर
0: जिसे कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, उसके लिए आप कितने भी कर दो, लेकिन वो पढ़ के देगा ही नहीं।
1: सही कह
0: और
1: रहे हैं
0: हमने भी इसी तरीके से पहले तो इस लाइट का कोई मोमबत्ती में ही पढ़ते थे।
1: जी। हमने देखा कि आजकल विद्युत तो बाधित हो भी नहीं रही है
0: नहीं
1: ना,
0: नहीं
1: तो
0: नहीं
1: इन्वर्टर की आवश्यकता रही नहीं, तो सोलर
0: नहीं
1: की
0: नहीं नहीं
1: आवश्यकता
0: है।
1: है।
0: अब कोशिश मैं भी ये करूंगा कि मैं भी लगा हुआ हूँ कि बैटरी बनाने के उसमें,
1: अच्छा,
0: हाँ बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग।
1: तो सर हमारी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि
0: जी
1: जो आपने सोचा है उसमें आप जरूर सफल हो।
0: थैंक यू सर, थैंक
1: जी
0: यू।
1: सर, और अब आप गीत कौन सा सुनना चाहते हैं ये बता
0: वही
1: दीजिए।
0: जिंदगी के सफर में गुजर
1: ठीक,
0: जाते हैं।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। धन्यवाद सर।
0: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी हेलो, कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है। मैडम
0: जी,
1: मैडम आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
0: मैं रश्मि बोल रही हूँ। मैं आगरा से बोल रही हूँ।
1: क्या करती हैं मैडम?
0: एग्जाम दे रही हूँ, मैं साथ साथ अपना जॉब भी कर रही हूँ।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं आप दे रही हैं?
0: मैं एसएससी दे रही हूँ।
1: अच्छा, ईश्वर से हमारी ये प्रार्थना है कि जो भी आपने सपने देखे हैं वो आपके पूरे हों, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
0: थैंक यू सो
1: और
0: मच।
1: आकाशवाणी आगरा आप सुनती हैं?
0: हाँ जी, मैं सुनती हूँ,
1: अच्छा, कब से सुन रही हैं मैडम?
0: काफी टाइम हो गया। अच्छा,
1: अच्छा, तो मैडम आज आपने हमारे इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनने के लिए फोन किया है हमें?
0: मुझे खुदाया भी सुनना है, लक मूवी का। हाँ
1: ठीक है, हम
0: जी
1: आपको आपकी फरमाइश का गीत जरूर सुनवाएंगे।
0: जी
1: आपका
0: सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: मोस्ट वेलकम सर।
1: जी।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में आपका स्वागत है मैडम। कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मेरा नाम समायरा है, मैं आगरा से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: हाँ जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं अभी कॉलेज के लिए सर्च कर रही हूँ, अभी मैंने जस्ट 12th पास किया है।
0: अच्छा, ओके। आगे क्या करना चाहती हैं भविष्य में?
1: आगे मैं BBA और MBA वगैरह बिजनेस स्टार्टअप करना चाहती हूँ अपना।
0: अच्छा, मतलब अभी से अभी आपने इंटर किया है और आप बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: सुनकर बहुत अच्छा लगा। ईश्वर से हमारी ऐसी कामना है, हमारी ऐसी प्रार्थना है कि आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हों, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: धन्यवाद, धन्यवाद
0: जी। और आज आपने हमें कौन सा गीत सुनने के लिए फोन किया है मैडम?
1: मेरी पसंद का गीत है तेरे लिए।
0: तो लीजिए, हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
1: धन्यवाद
0: जी।

0: हेलो
1: जी, कार्यक्रम हेलो
0: हेलो।
1: मेरी पसंद में आपका स्वागत है सर।
0: जी धन्यवाद।
1: जी
0: मेरी पसंद है तेरी गलियां सॉन्ग।
1: अच्छा, गीत हम आपको
0: जी
1: जरूर सुनवाएंगे। पहले ये बताइए सर कि कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं सर?
0: सर मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा नाम सर विपिन बैसला।
1: अच्छा, और बैसला जी आप क्या करते हैं?
0: सर मैं पुलिस में हूँ।
1: अच्छा, तो
0: जी
1: पूरे दिन बिजी रहते होंगे।
0: जी
1: काफी उत्तरदायित्व वाली नौकरी है आपकी। कैसा लगता है पुलिस की नौकरी में आपको?
0: डिफिकल्ट है
1: अच्छा
0: लेकिन उतना इंजॉयमेंट भी है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है।
1: अच्छा
0: अगर आप उस प्रेशर के रूप में लोगे तो आपको वो चीज डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप उसको अगर नई नई चीजों को सीखने के तौर पे देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है जी। जी,
0: जी
1: आपकी फरमाइश को हम आपको जरूर सुनवाएंगे।
0: सर
1: आपने कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: ठीक है सर, थैंक यू।
1: जी।

0: और दोस्तों, वक्त ही सबसे ज्यादा बलवान है, वक्त सबसे बड़ा होता है। और वक्त की ये खासियत है कि वक्त किसी को भी वक्त नहीं देता। अब वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं इस प्रोग्राम के निर्माता, निर्देशक, प्रस्तुतकर्ता और कार्यक्रम प्रमुख श्री अनिंद्र सिंह जी का ये संदेश।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर

0: 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: और इसी संदेश के साथ आपके अपने रेडियो साथी सूर्य को इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। प्रस्तुतकर्ता थे अनिंद्र सिंह। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ख्याल गायन। कलाकार हैं विदुषी मुद्गल। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विदुषी मुदगल का राग मारू बिहाग में गाया ख्याल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 196.1।

0: मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: At Asian Under 23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medal today. And that's the end of the news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोता, इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5:51 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। उस समय तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।